फरमाइशी प्रोग्राम लेके हाजिर होवांगे 11:02 ते प्रोग्राम होएगा पंजाबी तड़का जिदे विच तुसी साडे नाल जुड़ के पंजाबी गीतां दी फरमाइशां भी पूरी करा सकदे हो। 12:02 ते तुसी सुनोगे रोजाना जिंदगी नाल जुड़िया प्रोग्राम होम स्वीट होम। ठीक 1 बजे दोपहर नूं तुसी इंजॉय करोगे हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम च मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम दे विच। 2 बजे जिन्हां दोस्तां नूं शायरी दा शौक है उन्हां वास्ते पेश करांगे शायराना अंदाज दे विच दिल आज शायर प्रोग्राम, जिस विच मैसेजेस राहीं तुसी अपनी शायरी शामिल करवा सकदे हो प्रोग्राम।

0: ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਆਲੂ ਚਾਟ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1: ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੰਜੀਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 26 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। FM 102.7 MHz ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਲੰਧਰ। ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸ਼ਿਕਾ ਰਿਆਮ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ HR ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇੰਤੁਲਸੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੈਲੋ
2: जी, हाय, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं RM रेडियो का थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर मेरे थॉट्स को शेयर करने का मौका मुझे दिया।
1: जी मैम, जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारी गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम में आपका। जी मैम, कहते हैं कि किसी भी बुराई की जो शुरुआत होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी तक रहता है। जो आज का ये खास दिन है हम सेलिब्रेट करें, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ये दिन मनाने की हमें जरूरत क्या पड़ी, इसका मोटिव क्या है?
2: देखिए, तो ये दिन हमें ये सेलिब्रेट करने की जरूरत पड़ी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सिर्फ लोगों को नशे के खतरों के बारे में जागरूक करना नहीं, बल्कि उनको ये समझाना है, ये बताना है, युवाओं को ये समझाना जरूरी है कि नशे कुछ समय की खुशी दे सकता है,
1: बिल्कुल,
2: लेकिन लंबे समय में यह परिवार, उनके लाइफ, उनका भविष्य तीनों को नुकसान पहुंचा सकता है।
1: जी जी बिल्कुल। जी मैम, तो मैम आजकल हम देखते हैं सोसाइटी में कि जो यंग जनरेशन है उनमें स्ट्रेस, पीयर प्रेशर हो गया, या फिर उनकी जो कंपनी होती है कई बार गलत संगत के चलते वो नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। तो जो यंग जनरेशन है उसमें इतनी सारी जो ये प्रॉब्लम्स है ये क्यों देखने को मिलती है? कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी के चलते भी जो इंसान है वो नशे करने लग जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है?
2: देखो, मेरे हिसाब से इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे जो भी युवा है उनका फ्रेंड सर्कल स्ट्रेस हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, सोशल मीडिया का हमारे जीवन में इतना प्रभाव, इतना गहरा प्रभाव पड़ गया है कि कई बार हम गलत संगति भी युवाओं को नशे की ओर ले जा सकती है। और कुछ युवा इसे फैशन या स्टेटस सिंबल समझ कर भी शुरू कर देते हैं।
1: जी जी मैम, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने घर से सीखते हैं या माहौल से सीखते हैं। बच्चों की परवरिश में परिवार का और स्कूल का बहुत अहम रोल है। ऐसे में पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल है कि वो जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको नशे से दूर रख सकते हैं?
2: देखिए, परिवार और स्कूल दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बच्चों के साथ खुलकर बातचीत होनी चाहिए। अगर बच्चा किसी परेशानी में है तो उसे डांटने की बजाय उसे समझाओ, उसके साथ बैठो, राइट? और बच्चे को अच्छे संस्कार और सही मार्गदर्शन देना चाहिए, प्रेम, सहयोग और भावात्मक समर्थन देना चाहिए, नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। अक्सर जो नशा है या कोई भी गलत काम वो छुप कर करते हैं, यानी कि बिना बताए किसी को। तो काफी जब देर हो जाती है नशा करते हुए, ऐसे कौन से शुरुआती संकेत हैं या सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स को नजर रखने की जरूरत है कि उनके बच्चे के बिहेवियर में या उसके लाइफस्टाइल में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं अगर वो नशा कर रहे हैं?
2: देखिए, अगर बच्चे के व्यवहार में बहुत सडनली एक अलग बदलाव

0: आए ठीक है, बच्चे की पढ़ाई में रुचि कम हो जाएगी, वह परिवार से दूर दूरी बनाने लगेगा या उसके दोस्तों का दायरा अचानक बदल जाएगा, तो माता पिता को सतर्क हो जाना चाहिए। घर से बार बार पैसे या सामान गायब होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा या उदासी बनाए रखना, नींद और खाने की आदतों में बदलाव आना, तो ये सब वो कारण है जिससे हमें पता लग सकता है कि बच्चे के व्यवहार में चेंजेस है, बच्चा कितनी गलत डायरेक्शन साइड जा रहा है।
1: जी जी जी मैम, आजकल हम देखते हैं कि पंजाब में या कई राज्यों में नशा एक गंभीर चुनौती बन चुका है हम सबके लिए। इस समस्या से निपटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो एजेंसीज हैं वो किस तरह का प्रयास कर रही हैं, किस तरह के कदम उठा रही हैं?
0: देखो मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सभी प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने देश को एक नशा मुक्त अच्छा यूथ हम बनाए, राइट। तो सरकारी नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जागरूकता अभियान चला रही है और नशा मुक्ति केंद्रों को मजबूत बना रही है, लेकिन केवल सरकार ही नहीं समाज और परिवार को भी इसमें भागीदारी निभानी होगी।
1: जी जी मैम, तो मैम जैसे जब कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में जाता है तो उसके लिए सही इलाज और काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब भी कोई बीमारी हो जाती है तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी मेडिसिन लेते हैं ठीक होने के लिए। तो नशा मुक्ति जो केंद्र है उनकी क्या भूमिका है इस प्रोसेस में?
0: देखिए नशा मुक्ति केंद्र सिर्फ एक ऐसा एक माध्यम है, एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे हम उनकी नशे की लत जिस भी यूथ को है उसको बाहर निकालने में नशा मुक्ति केंद्र की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
1: जी,
0: नशा मुक्ति केंद्र उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ सोशल मीडिया उपचार, काउंसलिंग या फिर मानसिक सहयोग के जरिए व्यक्ति को सामान्य जीवन में वापस लाने की कोशिश की जाती है।
1: जी मैम, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी टाइम से नशा कर रहा है, उसको काफी साल हो गए हैं, तो अगर वो इस केंद्र में जाता है, नशा मुक्ति केंद्र में जाता है, तो उसको ठीक होने में, नॉर्मल जो उसका लाइफस्टाइल है पहले की तरह व्यतीत करने में कितना टाइम लगेगा?
0: मैम इसमें एटलीस्ट 3 से 6 महीना लगेगा। जब एक पेशेंट हम जिसको कह सकते हैं जिसको नशे की आदत लगी है वो वापस रिकवर होगा और अच्छे से रिकवरी होने के बाद, डिटॉक्स होने के बाद, वो उसको इस तरीके से काउंसलिंग दी जाएगी कि वो अपने आप को वापस इन सब चीजों में ना ढाला जाए।
1: जी जी जी जी मैम, यही क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछने वाली थी कि कई लोगों के दिमाग में सवाल जरूर होता है कि अगर एक बार नशे की लत लग जाती है और उसके बाद अगर वो थोड़े टाइम तक भी ठीक रहे तो वो प्रॉपर रिकवर नहीं हो पाता, रिकवरी के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है जो बाद में भी हमें अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें वो ऐड करनी चाहिए, जो रूटीन है?
0: देखिए जो भी नशा मुक्ति केंद्र से आता है या फिर जिसको नशे की लत लगी है उसके लिए वहाँ पे जो थेरेपीज दी जाती है, जो मेडिकेशन होता है, उसके अलावा उसके बाद भी जो व्यक्ति है उसको परिवार का सहयोग मिलना चाहिए।
1: जी,
0: और उसको सही इलाज समय पर मिले तो नशे की लत को हराया जा सकता है।
1: जी मैम,
0: जी
1: जी ऋषिका मैम, नशे की जो समस्या है हम मानते हैं कि इसके पीछे ड्रग की इलीगल ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। इस पर रोक लगाने के लिए या ये जो समस्या है इसको बिल्कुल खत्म करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, समाज है, उनको किस तरह मिलकर कदम उठाना चाहिए, क्या काम करने चाहिए?
0: देखिए कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: तस्करों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आम नागरिकों को भी जागरूक रहकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए जिससे कि हम ये सब चीजें रोक सके।
1: जी मैम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग के मौके पर आप हमारी जो लिसनर्स हैं, हमारे जो यूथ हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या आप मैसेज देना चाहोगे?
0: देखिए मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि आपका भविष्य किसी भी नशे से कई ज्यादा कीमती है। अपनी एनर्जी को, अपने फ्यूचर, अपने स्पोर्ट्स गेम्स, अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लगाएं। नशे

0: को नहीं जिंदगी को चुनिए।
1: जी जी, थैंक यू मैम। हमारे साथ आप गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम में जुड़े और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे पर हमारे साथ इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की।
0: जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।

0: ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਰੇਹਾਨ ਹਸਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਉਰਦੂ ਐਂਡ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਹਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੈਲੋ
1: ਹੈਲੋ
0: ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਆਪਕਾ।
1: थैंक यू
0: जी। तो सर, जो मुहर्रम का ये महीना है जिसे बेहद अकीदत, सम्मान और गम के साथ याद किया जाता है, आखिर ये जो मुहर्रम है ये होता क्या है? मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, ये महीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इतना खास क्यों माना जाता है?
1: मुहर्रम अल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है
0: जी।
1: मुहर्रम अल हराम से ही हिजरी साल का आगाज होता है। इस्लाम की आमद से कब्ल अहद जाहिलियत में भी लोग इस महीने को एहतराम की नजरों से देखते थे
0: जी।
1: वो इस महीने में जारी जंगों को भी रोक दिया करते थे। इस महीने की 10 तारीख को नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत वाकई हुई है। तारीख इस्लाम का ये एक ऐसा अंदोहनाक और गमजदा वाकया है कि रहती दुनिया तक हर इंसान के दिल में उसकी कसक उठती रहेगी
0: जी। जी डॉक्टर रेहान जी, जो आपने एक वाक्य की यहाँ पे बात की है, करबला की जो घटना थी उसको इतिहास के सबसे महान कुर्बानियों में से माना जाता है, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ था इसमें हमें इंसानियत, सब्र और हिम्मत और सच्चाई के रास्ते पर चलने की कौन कौन सी सीख मिलती है इस घटना से?
1: वाकई करबला जुल्म जबर के खिलाफ डट जाने और हक को सदाकत की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने का दर्द मिलता है। वाकई करबला कमजोरों को हौसला और गमजदों को जिंदा रहने का हौसला अता करता है
0: जी।
1: वाकई करबला बातिल सब्र इस्तकामत और जुल्म के खिलाफ डट जाने का अजीम दर्स देता है
0: जी।
1: करबला का बुनियादी सबक यह है कि अपने उसूलों पर समझौता किए बगैर जालिम हुक्मरान के सामने खड़े होना और इंसानी उसूलों के लिए हर किस्म की कुर्बानी देना ही असल कामयाबी है। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के गैर इस्लामी और जाबराना तर्ज हुक्मरानी को तस्लीम करने से इनकार करते हुए ये सबक दिया कि हक की खातिर डट जाना चाहिए
0: जी। जी जी।
1: मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने बदतरीन हालात और प्यास के बावजूद जिस सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा किया उसकी मिसाल दुनिया पेश करने से कासिर है
0: जी। जी।
1: हजरत इमाम हुसैन का सफर करबला हमें सिखाता है कि वक्ती फायदा और इक्तदार और हुकूमत के लिए उसूलों का सौदा नहीं करना चाहिए। वाकई करबला जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने का अमली सबक देता है
0: जी।
1: करबला वो वाहिद जंग है जिसने शहादत के साथ साथ इंसानों को अखलाकी सबक भी अता किया है। वाकई करबला हमें जिंदगी के उसूल भी बताता है और शान से जीना भी सिखाता है
0: जी। जी डॉक्टर रेहान जी, जैसे आपने कहा है कि अपने असूलों पर हमें डटकर खड़े रहना चाहिए, हक की खातिर डट के खड़े रहना चाहिए, तो जो आपने हजरत इमाम हुसैन जी का जो वाक्या हमारे साथ शेयर किया है, तो आखिर उनकी जो कुर्बानी है उसको हक, इंसाफ और इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल क्यों कहा जाता है आज भी?
1: हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी हक, सच्चाई और इंसाफ की बका की अलामत है। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की जालिम और गैर इस्लामी हुकूमत के सामने झुकने के बजाय अपने अहले खाना की जान कुर्बान कर दी ताकि इस्लामी उसूलों और इंसानी उसूलों को क़यामत तक जिंदा रखा जा सके। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान करके इंसानियत को यह पैगाम दिया कि ताकत हक नहीं, हक ताकत।

0: जी
1: इमाम हुसैन की शहादत का फलसफा ये है कि जब बात गैरत दीन और शायर इस्लाम की हो तो सर मत झुकाओ बल्कि जालिम के सामने सीना सपर होता हो।
0: जी
1: हजरत इमाम हुसैन का असल मकसद उम्मत की इस्लाह, दीन की हिफाजत और हक का दफा था। आपने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि एक मुसलमान के लिए उसूल और सच्चाई दुनियावी मफादात से ज्यादा अहम है। हजरत इमाम हुसैन को सफर के खतरात का अंदाजा था लेकिन आपने हक के मौके से पीछे हटने के बजाय साबित कदम रहने को तरजीह दी।
0: जी
1: शहादत हुसैन को पूरी दुनिया में इस कदर जोश खरोश के साथ इसलिए याद किया जाता है कि इमाम हुसैन की कुर्बानी मनसब दौलत के लिए न थी बल्कि आपकी जंग अपने नाना मोहम्मद मुस्तफा के अजीम मिशन को जिंदा रखने के लिए थी।
0: जी
1: आपकी जंग निजाम इस्लामी के तहफ्फुज़ के लिए थी। इसलिए जब तक ये निजाम बाकी रहेगा इमाम हुसैन की शहादत जिंदा रहेगी। जिस तरह से हजरत मोहम्मद का मिशन कभी मुर्दा नहीं हो सकता उसी तरह दुनिया कभी भी आपकी शहादत और कुर्बानी को भुला नहीं सकती।
0: जी
1: यही वजह है कि दुनिया ने बहुत कुछ भुला दिया लेकिन शहादत हुसैन को न भुला सकी।
0: जी
1: इसलिए शहादत हुसैन को उस वक्त तक मनाया जाता रहेगा जब तक इस्लाम दुनिया में जिंदा रहेगा। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना हो कि इमाम हुसैन आज भी जिंदा है और ताकयामत जिंदा रहेंगे।
0: जी जी बेशक जी। डॉक्टर रेहान, मुहर्रम के इस पवित्र मौके पर अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, रूटीन है, उसमें हमें कौन कौन सी अच्छी बातें सीखनी चाहिए जो इंसानी मूल्य और सीखे अपना सकते हैं ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सके और समाज में अमन, भाईचारे और इंसाफ का संदेश फैला सकें।
1: हज़रत इमाम हुसैन ने बताया कि खानदान और खूनी रिश्ते ज़्यादा अहम नहीं होते, हक और सच्चाई का रास्ता ज्यादा अहम होता है।
0: जी
1: रूहानी रिश्ते दुनियावी रिश्तों पर मुकद्दम है। हजरत इमाम हुसैन ने बताया कि मकसद से नहीं हटना चाहिए, वक्ती खुशी हासिल करने के बजाय आखिरत की जिंदगी को तरजीह देना चाहिए और हक के अलमबरदार बनकर मैदान अमल में खड़ा रहना चाहिए। इमाम हुसैन ने अपने अमल से बताया कि मौत से बुजदिल रहते हैं और बहादुर मौत को गले लगाते हैं।
0: जी
1: हजरत इमाम हुसैन ने लोगों को ये यकीन दिलाया कि वसाइल मुहैया ना भी हो तो मकसद की तरफ आगे बढ़ता रहना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह वाले कुव्वत ईमान पर भरोसा करते हैं। जैसा कि शायर ने कहा है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन ने बताया कि जुल्म जारियत मुसलमानों का रास्ता नहीं बल्कि दफाए दीन, दफाए हक और रास्ती मुसलमानों का रास्ता है। उन्होंने शहनशाहियत और नाजायज हुक्मरानी को तस्लीम करने से इनकार करते हुए शहादत की मौत को तरजीह दी और फरमाया कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अगर हजरत इमाम हुसैन के इन उसूलों पर इंसान अमल करने लगे तो ये दुनिया अमन और सलामती का गहवारा बन जाएगी। आज इमाम हुसैन की दास्तान मुख्तलिफ मजाहिब, कौमों और सकाफतों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुतासिर करती है।
0: जी
1: और यूं ये सिर्फ मुसलमानों का सरमाया नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के मुश्तरका अखलाकी वरसे का एक रोशन बाब है।
0: जी
1: हजरत इमाम हुसैन ने चंद घंटों में अपना तमाम घर लुटा दिया, हक पर मर मिटने के लिए आए थे शहीद हो गए।
0: जी
1: जिस मकसद के लिए निकले थे वो पूरा किया और दुनिया को दिखा दिया कि राय हक पर चलने वाले इस तरह कुर्बानियां देते हैं। आज किसी कौम में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। हजरत इमाम हुसैन ने दुनिया के हर फिरके और मजहब को राय हक पर मरना सिखाया। हुसैन की शहादत इस नुक्ते को जाहिर करती है कि अगर ईमान पुख्ता हो तो मरना आसान हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया वाकई करबला से सबक हासिल कर रही है। हम करीब एक ऐसा जमाना आएगा

0: जब हुसैनियत थी हर शख्स का मजहब होगा और दुनिया से बहुत फसाद हमेशा के लिए मिट जाएगा। जोश भरी आबादी ने सच कहा था, क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नोए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन।
1: जी डॉक्टर रेहान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत आसान भाषा में समझाया कि मुहर्रम क्या है, इसकी क्या अहमियत है, इसे क्यों मनाया जाता है, साथ ही आपने करबला की जो कहानी है उससे मिलने वाली सीख, इंसानियत का संदेश भी हमारे साथ शेयर किया।
0: शुक्रिया
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया
1: जी। दोस्तों, ये थे डॉक्टर रेहान हसन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू एंड पर्शियन इन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में। इन्होंने हमें बहुत ऐसी जो बातें हैं वो सिखाई हैं, समझाई हैं, हमें बताया है कि जो मुहर्रम का ये पवित्र दिन है, प्योर दिन है, इसका मतलब क्या है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

मामला गड़ 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम ब्रेन पोते वेला हो चुका है एफएम न्यूज हेडलाइंस दा ते आओ हुन सुनदे आ एफएम न्यूज हेडलाइंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते नीदरलैंड दी महारानी मैक्सिमा ने भारत विच डिजिटल जनतक व्यवस्था नाल होई क्रांतिकारी तब्दीली ते चर्चा कीती। सरकार ने उद्योगिक अते व्यापारिक एलपीजी सप्लाई तों सारियां पाबंदियां हटाईयां।

ये जो प्यार को बंदगी बनाने वाले सॉन्ग्स है ना, एना नहीं ता 90s जेडे किड्स देना ओना दी हालत कितनी हुई सी खराब। आकाशवाणी FM रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे गीत बहार विद मी आरजे गरिमा। एक्चुअली जो 90s किड ने ना मिलेनियल्स, उन्हां दी गलती नहीं है कि वो प्यार नू बहुत बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला प्यार जो है लाइफ के विच डिमांड कर देने, मतलब ऑफकोर्स बिकॉज उन्होंने देखा हुआ है कि किस तरीके नाल 90s के मूवीज विच इवन 20s के मूवीज विच भी दिखाया गया है कि प्यार जो है ना वो अमर हुंदा है एंड सालां बाद ही मिल जाता है, इंतजार जो है वो बहुत लंबा हो जाए पर प्यार मिलता ही मिलता है। सो इस तरीके दियाँ जो मूवीज़ देख के वड्डे हुए जो यू नो 90s बॉर्न लोग ने, ऑफकोर्स उन्हें बिल्कुल गलती नहीं है, वो एक्चुअली प्यार नू बंदगी मानते हैं एंड इधर कोई गलत गल नहीं है। पर हाँ कई बार ओवर हो जाता है बिकॉज म्यूजिक जो है वो तो चीज़ ही इदा दी है, सानू फैंटसी वर्ल्ड दे विच लै ही जाता है। फिलहाल जी प्रोग्राम गीत बहार विच आरजे गरिमा दे नाल बने रहो FM रेनबो ते, क्योंकि अगला गाना है शान दी आवाज़ दे विच एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

वो पहली बार मिलने वाला सीन इन मूवीज में कैसा होता था. आकाशवाणी एफ एम रेनबो पे प्रोग्राम चल रहा, गीत बहार विद मी आरजे गरिमा. सो येस ऑफ कोर्स 90s दी मूवीज दे विच जो पहली बार मिलन वाला सीन हुंदा सी, ओ हीरो हीरोइन आपस टकराते सी, यू नो दी बुक्स डिगदियां सीगियां एंड बुक्स चुकदे चुकदे ही यू नो आई कॉन्टैक्ट हुंदा सीगा एंड देन उसे टाइम एक सैकेंड विच ही हो जाता सी हैशटैग प्यार. सो आप पता ओ वाले मूमेंट्स देखे हुए ने. सो किदा आज दी डेट दे विच ऑनलाइन वाला प्यार जो है उन्हूं आपां मान्यता दे दिए, राइट. सो एनीवेज फिलहाल जी ये 90s किड्स से मिलेनियल्स की कहानी है एंड गाने भी थोड़े 90s या 20s दे प्ले हो रहे ने. सो इस करके थोड़ा जहा उस बारे आप गल्ला कर रहे हैं नाल नाल बाकी गीत बाहर प्रोग्राम दे विच. अगला गाना जो आप सुनते हैं एंड तुसी सुनते रहो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ AIR FM रेनबो आरजे गरिमा थोड़े नाल. स्टे ट्यून्ड.

वेल जी, पर हमको तो मालूम है कि कौन सी फिल्म का गाना है। आकाशवाणी फिल्म रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे गीत बहार आरजे गरिमा दे नाल। तुसीं एंजॉय कीता 1994 दी फिल्म खुद्दार दा एक ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ट्रैक। एंड ऑब्वियसली जो गाना है खुद्दार फिल्म दा गोविंदा ते करिश्मा कपूर दे उत्ते पिक्चराइज्ड है। सो ऑफकोर्स इनू

लिखा है राहत इंदौरी ने, एंड ऑफ कोर्स गाया है कुमार सानू एंड कुमार सानू ने एंड अलका याग्निक ने. एंड फिलहाल जी अगला जो गाना है ना वो कुमार सानू एंड पूर्णिमा दीवाज दे विच, एंड पूर्णिमा दा मेनली ये गाना है. सो एक्चुअली की है ना कि करिश्मा कपूर एंड गोविंदा दिया जो मूवी सी उस दौर दे बैक टू बैक बहुत सुपर हिट जा रही सी, एंड दोनों की जोड़ी ने भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है. सो इस करके फिर राजा बाबू फिल्म तो अगला गाना सुन लिया. ऐसे गलते यू स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो विद मी आरजे गरिमा.

मेरा नाम तो आरजे गरिमा है और आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम गीत बहार पेश कर रही है। फिलहाल प्रोग्राम द लास्ट ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ, फिर उसके बाद अगले प्रोग्राम पंजाबी तड़का विच मैं थानू मिलांगी, बट आफ्टर एफएम न्यूज हेडलाइंस। बट बिफोर दैट गाना तो जरूर इंजॉय करो, स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।

0: में फ्लाई करके आ गई मैं। वैसे तो मैथी बैठी हुई सी सवेरे 10 बजे तो आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा जी, तुहाडा अपना पंजाबी तड़का आरजे गरिमा दे नाल। सो जी प्रोग्राम जिहदे विच तुसीं पंजाबी गाने अपने फेवरेट वाले अपने मन पसंद दा जो है वह प्ले करवाते हो, तो नाल ही करते आप बहुत सारी गल्लां इस प्रोग्राम दे विच। ते फिर आप पहले कॉलर दे नाल फटाफट गल करांगे, पर इस गाने तो बाद यू स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा पंजाबी तड़का।
1: Honey sing, the next level.

0: गलबात कर दिया। हेलो,
1: ऊपर वाले तेरी महफिल में हम ये फरियाद करते हैं, उनको तुम सदा खुश रखना, मैडम जी को जिन्हें हम फोन सुबह और कभी कभी शाम करते हैं।
0: वाह जी वाह, कौन कॉल करता है हमें आपकी तारीफ?
1: तारीफ उस ऊपर वाले की जिसने हमें बनाया और आपने हमारा फोन उठाया, तारीफ तो आपकी है मैडम जी। सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर।
0: ओके सतीश जी, की हाल चाल थोड़ा?
1: हाँ चल बढ़िया मैडम, थोड़ी उंगलियां दर्द है, रीडायल कर करके ना।
0: रीडायल हाँ, पर कोई नहीं, बड़ी छेती फोन लग गया था, हले तक 11:15 भी नहीं होए गए।
1: नहीं मैडम, दिन बहुत हो गए ना, तो तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जी।
0: ओके ओके, केड़ा गाना सुनोगे?
1: गीत सुना दो मैडम जी, महेंद्र कपूर दा। बाकी छोटी जी गल मैं भी कहना चाहवांगा, जिदा आप सड़कां ते चलदे आ ना गड्डी लैके, असीं अक्सर देखदा कई लोग ठोकदे आ जी रस्ते च।
0: अच्छा बिलकुल,
1: मैं देखिया कई लोग ना जदों आपां स्कूटी ते जांदे आ ते या जिदा गड्डी ते जांदे आ, कुछ खा के बाहर सुट दिंदे। मैं सवेरे भी किसे ठोकिया सी, उन्हें खा के ना छिलका जा पता नहीं की सीगा सड़क ते सुटता। इदां दा काम सानूं नहीं करना चाहीदा,
0: बिल्कुल।
1: साडा अपना देश है जी, इहनूं साफ सुथरा रखो।
0: बिल्कुल, आस पास डस्टबिन है, ओहदे विच सुट्टो, नहीं तां अपने नाल लै जाओ घर जाके सुट दो डस्टबिन।
1: बिल्कुल, साडी ड्यूटी बनदी है जी इस गल दी।
0: बिल्कुल,
1: बंदा समझदार सी, कहिंदा सॉरी अज तों बाद इदां कम नहीं करांगा। मैं कहिंदा मैं अग्गे सुटदा, मैं किसे ने कहा नहीं, मैं कहा रेडियो सुनदे आ, ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਫਿਰ
1: ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲੀਆਂ।
0: ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ
1: ਓਕੇ ਮੈਡਮ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
0: ਸੋ ਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਜਿਕਲੀ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ। ਐਂਡ ਫਿਲਹਾਲ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਆਰਜੇ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਲੀ ਔਨ FM ਰੇਨਬੋ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा जी थोड़ा अपना पंजाबी तड़का। हेलो
1: मैडम जी, प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: अमनदीप सिंह, पिंड हठूर, तहसील जगराओं, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना जी।
0: ओके अमनदीप जी, की हाल चाल थोड़े?
1: हाल चाल मैं बहुत ही वधिया जी, तुसी अपने सुनाओ की हाल चाल?
0: चढ़दी कला। सो अमनदीप जी, की करदे हो तुसी?
1: मैं बीएसपीसीएल दे जॉब करदा जी।
0: बीएससी?
1: बीएसपीसीएल।
0: ओके,
1: पावर कॉर्पोरेशन।
0: अरे वाह, सो उत्थे जॉब करदे हो तुसी? फुल गवर्नमेंट जॉब? हाँ
1: जी, हाँ जी, यस।
0: अरे अरे, क्या बात है। सो जी, नाल नाल रेडियो दा आनंद ले रहे हो?
1: कदे कदे सुन लेना हुना जे को समा लगे। अज काफी दिन बाद सुनया प्रोग्राम में तुहाडा।
0: अच्छा अच्छा,
1: ते तुहाडे नाल मेरी गल तां जदों एफएम रेनबो विच भी बंद भी हो गया सीगा, ते उस तों मेरी किते पहला तुहाडे नाल इक वार गल होई सी बस।
0: अच्छा,
1: बड़े टाइम बाद गल होई।
0: बिल्कुल, क्योंकि मैनू भी आवाज नवी नवी लग रही है, ताजा ताजा लग रही है, सो आई कैन इमेजिन। बिल्कुल बिल्कुल। सो चलो, एनीवेज फाइनली वी बोथ कनेक्टेड। मतलब साडी आकाशवाणी ते की है ना कि जदों सानू साडे नवे नवे दोस्त जुड़ते ने होर भी ज्यादा वधिया लगता है। एंड तुसी हो सकता है कि दोस्त पुराने हो पर कदे कदे ही नंबर लगांदे हो अपना, है ना? ठीक है जी, केड़ा गाना सुनोगे तुसी?
1: गाना मैडम जोश ब्राड दा हार्ट एंड पेन सुनवा दियो। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके,
1: सो मच मैम, शुक्रिया।
0: सो जी अमनदीप जी का फेवरेट गाना प्ले करिए, इस नाल ही आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम पंजाबी तड़का नु समापन करिए, क्योंकि अगले प्रोग्राम्स नु भी लैके मैं आना है। सो ठीक 12 बजे जिवें तुसीं एफएम न्यूज़ हेडलाइन सुनोगे, उस तो बाद प्रोग्राम होम स्वीट होम सुनोगे। सो इस प्रोग्राम पंजाबी तड़का विच फिलहाल इतना ही, ते स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।

102.7 मेगाहर्ट्ज का आशोनी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं थोड़ा अपना होम स्वीट होम आरजे गरिमा है थोड़े नाल यू नो व्हाट समर वेकेशन दी एक इंसिडेंट याद है बहुत ही खूबसूरत स्कूल टाइम दे विच एक सानू प्रोजेक्ट मिलिया सीगा कि डस्टबिन जो है ओवन आके ले आओ अपने करो

102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा अपना होम स्वीट होम आरजे गरिमा दे नाल। बहुत सारे लोगों ने किया इस लेडी नू कि असा ते तेनू रब मनिया, बिकॉज ए जो लेडी है ना अरुणाचल प्रदेश की, जिदा का नाम है यनोंग जेमोह लेगो, इन्होंने अवार्ड मिलिया 2024 पद्मश्री अवार्ड। क्यों मिलिया सीगा? क्योंकि जो सरकार नू पता लगा कि यू नो यनोंग जेमोह लेगो इन्हों ने बहुत सारिया इदा दया हर्ब्स बनाई ने, बहुत सारी हर्ब्स के नाल उन्हां लोगों नू हील किया है जिन्होंने बहुत ही सीरीयस डिजीज़ सिगे, कैंसर वर्गे डिजीज़ सिगे, स्पेशली थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज उन्होंने भी ठीक किया। सिर्फ कुछ ही लोगों नू नहीं बल्कि 10,000 नालों भी ज़्यादा लोगों नू ठीक किया। सो जो गवर्नमेंट नू पता लगा तो फिर उन्होंने यनोंग जेमोह लेगो जो कि अरुणाचल प्रदेश की एक हर्बल हीलर है उन्होंने पद्मश्री अवार्ड के नाल नवाजिया। सो शी इज़ ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया अजकल भी, एंड द थिंग इज़ कि एक ना जनून होंदा है किसी दे विच, जे साढ़े कोल नॉलेज हैगी है ना तो उस नॉलेज के नाल जो आप दूसरों के लिए वधिया करना शुरू करते हैं ना तो पॉपुलैरिटी लोगों दी ब्लैसिंग सब कुछ नाल नाल चलता ही रहता है एंड बहुत कुछ मिलता है, बेशुमार मिलता है। सो इस करके कुछ भी जो तुम जिंदगी करना है ना लेडीज़, तो वो ना क्रिटिसिजम फेस करने के लिए तुम तैयार रहो। शुरू शुरू में बहुत क्रिटिसाइज किया जाएगा, पर लेटर ऑन जो तुम यू नो थोड़िया प्योर इंटेंशन थोड़े हार्डवर्क के सदका किसी एक मुकाम ते पहुंचोगे ना तो लाइफ तुहानू बहुत ही अमेजिंग सरप्राइजेस जरूर देगी, क्योंकि क्रिटिसिजम तो हर कोई जिहड़ा है वह झेलता है, एक देश का प्रधानमंत्री तो लैके एक आम इंसान तक, मतलब सब हर कोई झेलता है। तो जे आप शुरू तो ही क्रिटिसिजम तो डर जावे तो फिर जिंदगी में जो आप करना चाहते हो तो किवें करांगे। सो इस करके सारिया जिहड़ियां लवली लेडीज उस लाइफ बहुत कुछ करना चाहदियां ने, घरों बाहर निकल के या फिर घर रह के ही, बई अज ही है वह दिन, क्योंकि जो आप कल तो टालते रहेंगे ना कल नहीं आना, सानू किवें पता चलेगा कल केड़ा है। सो अज का जो प्रेजेंट मूमेंट है ना उ साडा स्टार्टिंग पॉइंट है, इस चीज़ नू ताड़ो अपने जहन दे विच। बाकी जी अगला गाना इंजॉय करते हैं आप, प्रोग्राम होम स्वीट होम बने रहो आरजे गरिमा दे नाल ओनली ऑन एफएम रेनबो।

102.7 MHz आकाशवाणी FM रेनबो पे प्रोग्राम चल रहा है जी, थोड़ा अपना होम स्वीट होम। सो जी की है ना कि बहुत सारी साडा जरा समान हुंदा है ना जो आप रखना हुंदा है बिखर जाता है, आप हौली हौली करके उन्हें बिखरा दें। मतलब एक चीज़ आप इतने रखी है ना, नैक्सट डे कोई होर चीज़ रखा ना, इदा पाइलॉन होंदे होंगे खलैरा पै जाता है। एक गल दसो, जो समान ज़्यादा हो जाए थान ना हो रखन की, तो अलमारी खोलो तो कपड़े बार बार डिगते हैं ना, मतलब इदा लगता है जिमें कपड़े कह रहे हो चलो जी असी आप ही बाहर आ गए, तुम कि सू कटना है आप ही आ जाने। पर जे घर साफ सुथरा तो ऑर्गनाइज रखना हो, एक चीज़ बड़ी कम की होंगी है वह है स्टोरेज बॉक्सिस। चलो जानते हैं किड़ा बॉक्स किड़े काम आता है। ओके, स्टोरेज बॉक्सिस होंगे ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। सब तो पहला प्लास्टिक का जो स्टोरेज बॉक्सिस होंगे ने ना, यह धूड़ नमी तो समान जे बचा हो जरूर आप रख सकते हैं, लाइक कपड़े होन, बच्चों के खिडौने होन, कुछ इस तरीके का जो समान है आप रख सकते हैं। फिर आते हैं फैब्रिक स्टोरेज बॉक्सिस। यस, अलमारी में बैडशीट्स, दुपट्टे या टाल्स रखने के लिए बहुत ही वधिया होंगे ने, फैब्रिक के नाल बने होंगे ने स्टोरेज बॉक्सिस, तो उत्तों की दिखने के बहुत सोहने होंगे ने। तो जे घर की सजावट भी करनी है तो तुम यह भी चाहिए कि बॉक्सिस सारा समान भी आ जाए, तो वुडन स्टोरेज बॉक्सिस बहुत वधिया एक चॉइस हो सकती है, स्टाइल भी तो स्टोरेज भी। हुण जे सर्दियों के जो ब्लैंकेट्स ने रजाइया ने बहुत जगह घेरते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, ऑफकोर्स आप स्टोर रूम में ही रखे हुआ इन्हों, उन्होंने तो नाम सुन के गर्मी लग रही है फिलहाल, बट ऑफकोर्स वह बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते हैं। तो फिर वैक्यूम स्टोरेज बैग जो है वह जरूर आजमा सकते हो, हवा कड्डो तो वड्डी रजाई में छोटे पैकेट वर्गी वो हो जाती है जी, यू नो रजाई जी है छोटे पैकेट वर्गी हो जाती है, जिमें कि डाइट कराती हो ब्लैंकेट्स नू। ते जे लाइक जिन्हां दे घर विच हर वेले नवा समान आ जाता है, आता ही रहता है, तो उन्होंने लिए ना स्ट्रैप जो एक स्टैकेबल बॉक्सिस होंगे ने बहुत वधिया है, यू नो एक दे उपर एक रखो स्टैकेबल, तो जगह जी वो भी बच जाती है। रसोई के लिए एयरटाइट कंटेनर सब तो बहुत वधिया होंगे ने, बिकॉज वो ही तो आप रखनी होंगे ने, दालां चावल आटा तो मसाले ताज़े भी रहेंगे सब कुछ, तो रसोई भी एकदम साफ सुथरी जी लगती है। सो अज यही कहांगे कि घर वड्डा होवे या छोटा, जे समान सही थां ते होवे ना तां घर भी खुला डुला लगता है, तो साडा जिहड़ा मन है वह भी खुला डुला लगता है एकदम खुश खुश खुश। सो घर की अद्धी सफाई झाड़ू नाल नहीं बल्कि चंगे स्टोरेज सिस्टम्स दे नाल, स्टोरेज बॉक्सिस दे नाल हुंदी है। हाँ जी, फिलहाल अगला गाना आप इंजॉय करते हैं आयुष्मान खुराना की आवाज़ दे विच, साडी गली आ जा। हाँ जी, सानू जान वाली है। सो गाना इंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत, एंड स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो, RJ गरिमा थोड़े नाल इन प्रोग्राम होम स्वीट होम।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की।

0: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे होम स्वीट होम आरजे गरिमा दे नाल। भी बारिशां हो जांदियां ने अजकल एंड बारिशां दे विच बहुत ज्यादा जरूरी है अपने किचन दी ग्रोसरी दा ध्यान रखना। यस, बरसात दा मौसम चाह ते पकौड़े ते सिर्फ गरम गरम भुट्टा नहीं हुंदा बरसात दा मौसम ऐ वी हुंदा है कि बहुत सारा मॉइस्चर जिहड़ा है ओ आ जांदा।

102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो पे जी प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं मिड डे मेलोडीज। जी हाँ, वो गाने जो कि सानू याद दिलाते ने पुराने वाले कुछ एपिसोड्स कुछ तरह ने एंड यू नो

क्या बात है, क्या ही बात है। आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे थोड़ा अपना मिड डे मेलोडीज आरजे गरिमा दे नाल। गाने दे विच किन्ना ज़्यादा किन्ने प्यारे प्यारे जो शब्द है वो यूज़ किए गए ने, जिवें कि कोई अप्सरा होवे एंड ऑफकोर्स संगीत की देवी। आई मीन बहुत ही खूबसूरत पेन डाउन किया गया है इस गाने नू, एंड प्रॉपर शुद्ध हिंदी विच इट फील्स लाइक वेरी वेरी एकदम हिंद कह सकते हैं कि आप प्रॉपर लाइक किसी भी कोई भी एक गाना सुनेगी ना स्त्री तो अपने आप को अप्सरा वर्गा फील करेगी इस गाने नू सुन के। गाने विच अजिही वाइब है जी। प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज विच बनी हुई तुसी आर जे गरिमा दे नाल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो ते। सो जी ऑल द वुमेन आउट देयर जस्ट लव योर सेल्फ एंड इंजॉय दिस गाना, बिकॉज एक गाना है बहुत ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा पुराना, नहीं एक्चुअली बहुत पुराना। सो चलो इंजॉय करो, स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।

102.7 MHz आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे जी तुहाडा अपना मिड डे मैलडीज सो बहुत सारे गाने जिहड़े ने डुएट गाए हुए ने रफी साहब ते किशोर कुमार दे उन्हां विचों एक गाना तुसीं इह सुनोगे तुहानूं लगेगा कि बई कोई भी आपस विच दुश्मनी हो ही नहीं सकती सी उस एरा दे विच बिटवीन दीज बोथ लेजेंडरी सिंगर्स बिकॉज उस टाइम दीआं मैगजीन्स दे विच जो भी रूमर्स या कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कीतीआं जांदीआं सी जानबूझ के उस दे बारे तां सभ नूं पता ही है बिकॉज अजकल भी इदां ही हुंदा है राइट सो द थिंग इज़ कि जदों मिल के इह दोवें गाना गाउंदे सीगे तां दोस्ती दी मिसालां वी ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਰੇਨਬੋ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਮਿਡ ਡੇ ਮੈਲਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 102.7 MHz आकाशवाणी FM रेनबो पे प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मैरिज। सो आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, इट्स टाइम की बहुत ही अमेजिंग जा गाना जो है उपले कितना चाहे, बिकॉज इस गाने तो बात तुम सुनो के प्रादेशिक खबरें, उसके बाद प्रोग्राम मिड डे मैरिज जो है वो जारी रहेगा। फिलहाल लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक, स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो।

फिलहाल मिड डे मेलोडीज लास्ट गाना प्ले करन दा इस प्रोग्राम दा सो जी इस प्रोग्राम तो बाद बाकी दे प्रोग्राम से तुसी इंजॉय करने ने पर फिलहाल ता आरजे गरिमा नु देओ इजाजत मी साइनिंग ऑफ एंड मिलांगी तुहानू फिर कदे किसी दिन हमेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते फिलहाल ए गाना इंजॉय करो तो सुनते चले जाओ तो हाडा अपना 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो बाय बाय

हर लफ्ज में एक एहसास छुपा होता है, हर खामोशी में भी कोई राज छुपा होता है। जो दिल से निकले वही शायरी बन जाती है, और जो मोहब्बत से सुनी जाए वही अंदाज जुदा होता है। तो सिर्फ उनकी 102.7 मेगाहर्ट्ज ते मैं तो हड़ी अपनी दोस्त महक ते प्रोग्राम स्टार्ट हो गए जी। दिल आज शायर है। एक ऐसी महफिल जिथे अल्फाजा दे सुर लगे हुंदे ने, ये सिर्फ अल्फाज नहीं हुंदे, जिथे सिर्फ अल्फाज सुने नहीं जांदे महसूस भी किए जांदे ने। अज दी इस हसीन दुपहर दे विच गल्लां होणगियां मुहब्बत दियां, यादां दियां, जिंदगी दे रंगां दियां ते उन्हां जज्बातां दियां जो हर किसी दे दिल विच छुपे होए ने। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਦ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। ये भी एक कला है जिहड़ी हर किसी नूं नहीं आंदी, पर हाँ जिन्हों आंदी है ना वह अपनी जिंदगी दे विच कुछ ना कुछ जरूर करता है। इसका मतलब नहीं है कि सानूं झूठ बोलना चाहिए है, लेकिन हाँ ये कला जिहड़ी है ना बाकमाल है। तो चलो जी अगली गजल सुनते हाँ खूबसूरत जी चित्रा सिंह जी की आवाज़ दे विच दर्द बढ़कर। ये तुसी गज़ल इंजॉय करो, मिलते हैं गज़ल दे उस पार। प्रोग्राम चल रहा है जी दिलाज शायर है, ते मैं तो मैं थोड़ी अपनी दोस्त महक।

सलीका जिनको सिखाया था कि सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। लहू लुहान पड़ा था जमीं पर एक सूरज, कि लहू लुहान पड़ा था जमीं पे एक सूरज, परिंदे अपने पैरों से हवाएं करने लगे। राहत इंदौरी साहब कहते हैं, क्या खूब लिखा है उन्होंने, कि जिन्हां नूं असीं पहला सलीका सिखाउंदे हुंदे सी, जिन्हां नूं असीं चलना सिखाउंदे हुंदे सी, वो अज सानूं ही दाएं बाएं करन लग पे। ते सूरज जेड़ा है वो लहू लुहान हो के जमीन ते पिया होया है, ते परिंदे उन्हूं पैरां नाल हवा करन लग पे। गल्लां बहुत गहरियां ने, समझन नूं टाइम लगेगा, तुसीं इहनूं समझो, थोड़ा जिहा देखो कि यार शायरी दे विच की सी। तद तक असीं सुनते हाँ अगली गज़ल, तो मिलते हाँ गज़ल दे उस पार। तो शायरियाँ जिहड़ियां ने ना मेरे दोस्त सानूं भेज ही रहे हैं, तो जल्दी असीं पढ़ते भी हाँ। तो एक होर चीज़ जिहड़ी, अज दा प्रोग्राम जिहड़ा है ना वो 2:30 बजे तक है, सो साडे कोल सिर्फ अद्धा घंटा है, क्योंकि उस बाकी दे अद्धे घंटे दे विच तुसीं बहुत ही खूबसूरत चीज़ां सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तों।

इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, पहले इज्जत से थोड़ी सी बात कीजिए। किस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, पहले इज्जत से थोड़ी बात कीजिए, फिर मुस्कान का तोहफा दीजिए, दिल जीतने की जल्दी बिल्कुल ना कीजिए, बस हर रिश्ता सच्चाई से निभाइए, यकीन मानो मोहब्बत अपने आप दस्तक दे देगी। कई गजलां इहो जी हुंदियां ने जिन्हां विच पहला तो हर गजल का ना एक मतलब हुंदा है, जिहड़े अल्फाज हुंदे ने इतने इन्ने ज़्यादा खूबसूरत हुंदे ने कि एक एक शब्द जिहड़ा इदां लगता है कि मोतियां दी तरह ना माला दे विच पिरोया होया है। तो कितनी खूब गल कही है कि मोहब्बत की शुरुआत किस तरीके दे नाल करनी चाहिए है। तो जिहड़ी मैं शायरी पढ़ी, ये शायरी इंदौरी साहब की है, तो उन्होंने भी कितनी खूबसूरती दे नाल लिखा है कि मोहब्बत जेकर तुसी उसकी शुरुआत करनी है तो सब तो पहला तो सानू पता होना चाहिए इज्जत दे नाल गल करनी है, फिर एक प्यारी जी मुस्कान पास करनी है, फिर उस तो बाद दिल जितन की गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जेकर तुहाडा बिहेवियर जिहड़ा है वह सोहना होएगा, जेकर तुहाडी वाइब चंगी होएगी, अपने आप मोहब्बत तुहाडे दरवाजे ते दस्तक जरूर देगी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों।

0: इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you!
4: Happy birthday to you, Stephen!
5: Thank you. How are you? Happy birthday, Stephen!
6: Thank you,
5: congratulations!
6: Thank you, John! Thank you so much. Hi, Martin. How are you?
3: Oh, fine.
6: Thanks for coming in. Please come in.
4: Oh, yes, sure. Yes. Why not? Why?

जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक

0: लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
1: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। पचासी में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी,
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा

0: जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
2: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
3: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
2: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
3: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
4: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
5: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
7: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं

0: आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
1: आग का गोला?
0: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे, मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
2: सूरज।
0: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
3: बहुत आसान पूछते हो।
0: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
3: अगली बार में बहुत मुश्किल।
0: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
2: हाँ।
0: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
3: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
0: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
4: वो तारा होता है।
0: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
5: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही, एकदम सही।
6: वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
3: धूप से हाँ। इतना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
3: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
6: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
3: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
3: धीरे धीरे घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
5: हाँ। जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
3: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
3: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
6: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है,
0: है ना?
6: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
3: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
6: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
3: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देख लें।
3: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ
6: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
2: सर्दी।
0: ओ ऐसी वाली सर्दी ना। हाँ। अच्छी लगती है सर्दी।
3: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
6: नहीं
0: है। सूरज आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता है।
2: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
2: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
2: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
2: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
2: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
2: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
2: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।

0: जी बता दो।
1: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
2: जल्दी आना मौसी।
1: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
0: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
1: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
0: वो भी दस पूछेंगे,
1: दस दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
0: है। आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
1: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
2: नहीं, 80 हो जाएंगे।
1: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे, मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, नशीली चीजों और पदार्थों के निवारण के लिए प्रतिवर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। इस पर और जानकारी हम आज लेंगे अपने इस कार्यक्रम में। आज ये विशेष अंक जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, उसमें हम ड्रग्स अब्यूज पर ज्यादा बात करेंगे और हमारे साथ हमारे दो रेडियो डॉक्टर आ चुके हैं स्टूडियो में। हम सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता, आप CMO एट CGHS हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विष्णु।
2: धन्यवाद।
1: हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट, दूसरे रेडियो डॉक्टर सुनील वात्सायन जी, आप डी एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं और चेयरपर्सन हैं नाडा इंडिया फाउंडेशन न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्टूडियो में।
3: धन्यवाद शालिनी जी।
1: विश्व भर में इस दिवस को मनाने की जरूरत पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। आप कुछ बताएं इसके बारे में, ये दिवस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
3: देखिए, ये जो दिवस है ये 1987 में जो कन्वेंशन हुआ जिसमें नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक्स जो ड्रग्स थी सब्सटेंसेस और उनकी इलाज और इलाज के साथ साथ जो ट्रैफिकिंग है उससे संबंधित जो एक कन्वेंशन हुआ, तो उस समय ये सारे देश एक साथ इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के उन लोगों ने एक विचार किया 1987 से 1988 के दौरान जो है कि क्यों ना इसको हमें हर साल एक दिवस के रूप में मनाएं। मैं समझता हूँ कि 35 साल 36 साल से तो मैं भी मना रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली मनाई जाती है वैसे ही हम लोग इसको भी त्यौहार के रूप में ही मनाते हैं। और त्यौहार का मतलब है कि पूरे साल हम लोगों की तैयारी चलती है और फिर हम इसको एक दिवस के रूप में मनाते हैं। जागरूकता के लिए ये एक संकल्प को दोबारा से रीडेडिकेट करने का एक अवसर होता है। रुकावटों को देखना है कि जो रुकावटें कहीं उन लोगों को जो कि नशे की तरफ जा रहे हैं, इलाज जो करवाना चाह रहे हैं वो नहीं पहुँच पाते, तो उनमें क्या रुकावट हो सकती है, क्या उनके साथ को ट्रीटमेंट रेडीनेस की बात हो सकती है, और उसी तरह से प्रिवेंशन पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है, चाहे वो सरकार की बात कहें चाहे अगर हम सोसाइटी की बात किए, क्योंकि समय इतना लंबा हो गया है और ऐसा लगता है कैंसर की लड़ाई कहीं रुक तो नहीं गई है, कहीं संभल तो नहीं गई, यानी कि फिर दोबारा से हमें एक आशा होती है कि नहीं हमें और काम करना है और काम करना है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं रुकना नहीं है और जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करना है और अवेयरनेस बढ़ानी है, और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज इस कार्यक्रम को इस मंच के माध्यम से हम पूरे अपने श्रोता समूह तक पहुंचा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा समूह है।

0: मैं बताना चाहूंगी जो रेडियो डॉक्टर को सुनता है, हमारे नियमित श्रोता हैं, इसके अलावा ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है हमारा कार्यक्रम। अगर आप चाहें तो उसको पुनः सुन सकते हैं। आकाशवाणी AIR हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर रेडियो डॉक्टर के बहुत सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, आपको जानकारी भरपूर मिलेगी। बस जरूरत है उस जानकारी को उपयोग में लाने की। तो आज जो जानकारी मिलेगी उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। बस कोशिश हमारी यही रहती है कि आपकी जो समस्या है इस जुड़े हुए टॉपिक के साथ वो हमारे साथ आप शेयर करें। हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं वो में आपको उसका क्या निवारण हो सकता है, सही किस तरह से उसको आप पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहां से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी यहां से हमारे रेडियो डॉक्टर्स आपको बताते हैं। मैं चाहूंगी डॉक्टर विष्णु आप हमें ये बताएं कि कौन कौन से प्रकार के नशा जो अक्सर लोग करते हैं वो किस तरह के और कितने प्रकार के हो सकते हैं।
1: देखिए, जो नार्कोटिक्स जो हम जिनकी ड्रग्स की बात करते हैं वो बेसिकली तीन तरह के ड्रग्स होते हैं। एक तो होता है नेचुरल अकरिंग जो मतलब नेचर में पाए जाते हैं, दूसरे होते हैं सेमी सिंथेटिक और तीसरे होते हैं सिंथेटिक ड्रग्स। जो नेचुरली अकरिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि किसी प्लांट से मिलते हैं, जैसे ओपियम प्लांट से मिलता है, और ओपियम प्लांट से जैसे आपका मॉर्फिन हो गया, ओपियम हो गया, खुद हो गया, कैनाबिनिस से मिलता है, उसमें आपका जो गांजा हो गया, भांग हो गया, और तीसरा होता है कोकेन जो कि आपकी कोका प्लांट से मिलती है। सेमी सिंथेटिक क्या होता है कि जो आपके नेचुरल अकरिंग जो ये ड्रग्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हीं को थोड़ा सा रिफाइंड करके बनाया जाता है। जैसे आपका हीरोइन है, ये सेमी सिंथेटिक फॉर्म है आपका ओपियम प्लांट का। और जो सिंथेटिक प्लांट जो सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं वो टोटली सिंथेटिक होते हैं, केमिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि आपका LSD हो गया, MDMA हो गया, इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं। तो इन तीनों का ही जो रोल है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है सबका रोल।
0: तो ड्रग्स का एब्यूज की बात होती है, जब हम आज बात कर रहे हैं ड्रग एब्यूज की बात होती है, तो ड्रग इसका मतलब फायदेमंद भी हो सकता है तभी उसके एब्यूज की बात होती है। फायदा क्या होता है ड्रग्स का?
1: देखिए, जब ये ऐसा नहीं है कि ओपियम आज हमें एक साल पहले मिला है, दो साल पहले मिला, सदियों पुराना प्रोडक्ट है, सदियों पुराना प्लांट प्रोडक्ट है, और इसी तरह कैनबिस है, ये भी सदियों पुराना प्लांट प्रोडक्ट है। पुराने जमाने में इन चीजों को रिक्रिएशनल ड्रग्स के रूप में लोग यूज किया करते थे। कई जगह पे जैसे किसी को मिलिट्री वगैरह के अंदर या युद्ध वगैरह होते थे, वहाँ पे एक तरह से एनाल्जेसिक की तरह यूज़ किया करते थे। जो सेनाएं होती थी, जो उनके कमांडर होते थे, वो इन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक उनके लिए बूस्टर की तरह काम करते थे। उन्हें देखे कि वर्क उनकी एफिशिएंसी या एनर्जी का लेवल जो एनहेंस कर देते थे उसकी तरह यूज़ किया करते थे। तो वो तो इसका एक पहलू हो गया। और आज के मेडिकल साइंस में भी अगर हम देखें तो ओपिएट के जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ओपियम से मिलते हैं सिंथेटिक रूप के अंदर, जो रिफाइंड करके मिलते हैं, वो मेडिसिनल यूज़ में भी काम में आते हैं। जैसे मॉर्फिन के इंजेक्शन होते हैं, वो किसी को सीवियर कार्डिक पेन होता है तो हम उसमें मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाते हैं। कोई टर्मिनली इल पेशेंट, कैंसर का पेशेंट होता है, इसको बोन पेन, सीवियर बोन पेन होता है जो किसी भी एनाल्जेसिक से ठीक नहीं होता, वो कई बार ओपियोइड प्रोडक्ट से ठीक हो जाता है। तो ये इसके कुछ यूजेस भी हैं
0: जी।
1: लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम लोगों की एक आदत होती है कि जो चीज़ जिस अच्छे काम के लिए बनी होती है ना, उसको हम डिफरेंट वे में देखने लग जाते हैं कि हम उसको कैसा यूज़ करें,
0: और यही अब्यूज,
1: यही एक अब्यूज, वो शुरुआत उसकी ऐसे ही होती है
0: जी। तो हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, पहले हम इनको ले लेते हैं, गाना बाद में सुनेंगे क्योंकि हमारे लाइन पर हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
2: जय किशन अग्रवाल, साइकिल मार्केट चैनल चौक से बात कर रहा हूं।
0: जी जय किशन जी, आपका स्वागत है। पहले आप बन गए हैं हमारे लिसनर जिन्होंने कॉल लगाई है आज जी।
2: मैडम बस आप लोग मिलवा देते हैं, सबसे बढ़िया बात ये है
0: जी, जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और बताएं क्या प्रश्न है आपका।
2: मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भांग होती है जो ठंडाई में बना के लोग पीते हैं और वो भी नशा होता है, तो क्या भांग पीना भी नशा है या नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरा, आदमी बीड़ी पी रहा है या शराब पी रहा है, जो भी पी रहा है, आज जितना हम सरकार का खर्चा इनको ठीक करने में लगता है, छोटा बच्चा भी सिगरेट बीड़ी पीने लगा है, खैमी खाने लगा है, और जो कुछ लड़के मैंने देखे हैं कि जो सोल्यूशन को सूंघते हैं वो भी एक नशा है, बस कृपया बताएं।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने उठाई है अग्रवाल जी, कि नशा करने की जो आदत है वो बढ़ती जा रही है। इसके बारे में अभी मैं अपने विशेषज्ञों से पूछूंगी, लेकिन एक और श्रोता जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
3: मैं द्वारका दिल्ली से बोल रहा हूँ, अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
0: जी हाँ, अपना नाम बता दें।
3: गिरिराज नाम है मेरा। और जैसे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है, वो आदत छूट नहीं रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं?
0: चलिए आप हमारा कार्यक्रम सुनिए सबसे पहले, तो इसमें बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी, कैसे ये आदत छोड़नी है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले मैं जयकिशन अग्रवाल जी के प्रश्न पे आऊंगी, क्या भांग भी नशे में आता है, उन्होंने ये जानना चाहे, और बीड़ी सिगरेट का क्यों

0: बढ़ा है, ये तो मैं बाद में बात करूंगी। भांग भी नशे में आता है?
1: बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बताया कि ये नेचुरल फॉर्म है, मगर इसको हम अगर देखें तो भांग या चरस, गांजा, ये एक ही प्लांट से ही तीनों चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ सवाल आता है कि ये जो हमारा प्लांट है और ये जो चीज़ है, ये मूड अल्टर करता है हमारा। और मूड अल्टर का मतलब है कि यहाँ पर वो एक ऐसे भाव या ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस साइकोसिस, यानी कि वहाँ तक वो बीमारी तक पहुँच सकते हैं आप। तो ये जो चीज़ है, ये भांग हमारे यहाँ पर, क्योंकि उस समय इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनली इस्तेमाल होता रहा है, बट ओकेजनल हुआ है। बट अगर वहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन गई कि जहाँ पर वो रेगुलर ले रहे हैं, यूज से अब्यूज तक पहुँच गए और डिपेंडेंसी पहुँच गए अगर उसी के अंदर, तो वहाँ स्थिति अनमैनेजेबिलिटी की तरफ चली जाती
0: है। स्टेजेस हो सकती हैं आपके हिसाब से कि कभी ओकेजनली ले लिया, साल में एक बार दो बार, तो
1: मगर वो जो ओकेजनल भी है, हाँ, वो उतना ही नुकसान और परेशान कर सकता है जितना बार बार लेना है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि आप जब एक बार लेते हैं तो उसमें जो आपकी मन स्थिति होती है वो आपको काफी कुछ पीछे ले जाती है, और उस पीछे में जो जाने में जो आपकी जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि आप समस्या का हल जो है वो भांग में जब आप ढूंढ लगते हैं तो समस्या आपकी बढ़ गई, चाहे वो एक बार ही ले या एक से अधिक बार ले।
0: इसीलिए कहते हैं शायद की लत पड़ जाती है, वो जो लत वाली जो एक बात कही जाती है ड्रग्स के साथ।
1: नहीं, लत के साथ साथ, क्योंकि लत तो थोड़ी सी देर में पड़ती है।
0: अच्छा,
1: मगर जो पहला यूज ही है, मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें उस समय जो हम, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम होली का एक मैं बात को कहूं कि होली पे अक्सर इसका इस्तेमाल होता है, वो सवाल आता है कि हम या तो स्पिरिचुअल पर्पस के लिए हम कोई ना कोई एक ऐसे कारण के लिए ले रहे होते हैं, मगर वो कारण तो पीछे छूट जाता है और वो बार बार का इस्तेमाल जो है हमारी लाइफ को अनमैनेजेबिलिटी की तरफ ले जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे ही आपने, क्योंकि आप अपने कंट्रोल को लूज करना चाहते हैं एक्चुअल में, आप फ्रीली जीना चाहते हैं, तो आपने वो वैसा बिना नशे के नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ पर माहौल ऐसा नहीं है समाज में कि हर समय अगर आपको कंट्रोल करा जा रहा है, पेरेंटिंग वाला बहुत ज्यादा कंट्रोल वाला हो रहा है, आपका स्कूल जहाँ हर चीज अगर कंट्रोल में आ रही है, तो व्यक्ति अगर खुद अपने को फ्री महसूस नहीं कर रहा है, एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा है, तो फिर वो नशे की समस्या यानी कि भांग या कोई ऐसे जितने भी शराब या तंबाकू का इस्तेमाल करता है, जिससे कि मैं उस समय के लिए कम से कम थोड़ी देर के लिए उन संवेदनाओं में घो जाऊं।
0: बिल्कुल सही आपने बोला सुनील जी, कि मैं इसके बाद यही पूछना चाह रही थी कि क्यों ये कारण है, और उन्होंने भी बोला कि अग्रवाल जी ने भी बोला कि धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है आदत, तो क्यों बढ़ती जा रही है? शायद कंट्रोल्ड एटमोसफियर उन्हें फील होता है, या लोग ज्यादा लिबरल होना चाहते हैं, आज का जो युवा है वो खुला रहना चाहता है या एक डिपेंडेंस चाहता है।
1: इसमें एक है ना जो डिपेंडेंस, एक शब्द होता है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस का मतलब यहां पर है कि जो असर, चाहे वो भांग हो चाहे वो अफीम का कोई भी एक क्वांटिटी, अगर मैंने एक ग्राम ली है अभी, तो जो असर मैंने अभी महसूस किया है वही असर को लेने के लिए अगली बार या आने वाले टाइम में मुझे उसको बढ़ाना पड़ेगा।
0: अच्छा।
1: और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसीलिए नशे का जो तरीका है वो भी बढ़ता जाता है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति नशा ले रहा है उसके पास पैसे भी कम होते चले जाते हैं, रुपया पैसा भी कम होता चला जाता है, और उसकी जो टॉलरेंस है वो बढ़ती जाती है। टॉलरेंस का मतलब है उसकी नशे की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, चाहे वो शराब की बात कहें, और वो अपने को नॉर्मल पाता है जब वो उतनी क्वांटिटी ले लेता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो पूरी बोतल पी ली चाय और पूरी शराब पी ली, मगर उसके बावजूद भी मैंने गाड़ी सही चला ली। इसका ये मतलब नहीं है कि वो, क्योंकि उन्होंने वो जो एक पैक जो पीना था जिससे उन्हें वो लगता चेंज आता, वो घर जाके पियेंगे, और इस बीच
0: बॉडी अभ्यस्त हो चुकी है
1: अब वो केवल, यानी कि बॉडी को नॉर्मल करने के लिए वो एक बॉटल चाहिए थी।
0: जी जी जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं लाइन पर। हेलो,
2: नमस्कार जी मैडम जी और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं राजकुमार चावला से बोल रहा था जी।
0: जी जी बताइए।
2: मेरा सवाल है जी, आजकल ये नए नए बच्चे हैं जी, नई उम्र के, ये इंजेक्शन लेते हैं जी, कहते हैं कि इंजेक्शन लगाते हैं कोई नशे के, तो ये कौन से इंजेक्शन होते हैं और कितना नुकसान करते हैं बच्चों को जी?
0: हम पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर विष्णु हमारे साथ। डॉक्टर साहब, इंजेक्शंस किस चीज के होते हैं और कितना नुकसान कर सकते हैं आपको?
3: देखिए, जितने भी ये सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं, ये सभी तीन रूप में बेसिकली लिए जाते हैं। या तो ये ओरल लेते हैं जिसमें छोटे से गोलियां बना के या किसी फूड में मिला के लेते हैं। सेकेंड, उसका पाउडर फॉर्म होता है जिसको स्निफ करके लेते हैं, तीसरा फॉर्म क्या होता है कि उसको वो डाइल्यूट कर लेते हैं, पानी में मिला लेते हैं, फिर उसके इंजेक्शन बना के लगाते हैं। तो बेसिकली मोस्ट कॉमनली जो ड्रग यूज होता है आईवी इंजेक्टेबल ड्रग अब्यूज।

0: करते हैं वो हीरोइन का करते हैं। तो ये जो हीरोइन होती है ये बेसिकली ओपियम का प्रोडक्ट होता है, जो रिफाइंड फॉर्म है ओपियम का उसका प्रोडक्ट है जिसको कि इंजेक्टेबल वो यूज करते हैं।
1: जी, यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे और आप अपने प्रश्न, आप अपने जिज्ञासा जो हम मैसेज के माध्यम से देख रही हूँ, बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं, तो इस गीत के बाद हम सारे ही मैसेजेस कॉल लेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज हम ड्रग एब्यूज पर बात कर रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज हम बात कर रहे हैं ड्रग एब्यूज पर और हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे श्रोता भी वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी जी, स्वागत है रेडियो डॉक्टर में आपका।
1: काली मैम नमस्ते, अमित की बात कर रहा हूं।
0: जी जी अमित जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका।
1: मैडम प्रश्न मेरा उन इंसानों के लिए है जो इंसान खुद तो मतलब नशा करते करते हैं दूसरे को धकेलने के लिए बोलते हैं कि आप भी करो और किससे मनोबल बढ़ता है तो उनकी

0: इंसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी बात है। और अभी हम बात कर ही रहे थे कि क्या कारण होते हैं कि युवा इसमें ज्यादा के ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये भी एक कारण है उसमें। क्यों सुनील जी? कि लोग खुद तो ले ही रहे हैं और दूसरे जो बच्चे होते हैं या उनका ग्रुप होता है वो उनको मोटिवेट करते हैं कि लेके तो देखो, ट्राई तो करो। वो कहाँ तक इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसा ये अमित जी जानना चाह रहे हैं। जी
2: अमित जी ने, मैं समझता हूँ, बड़ा जिसको कहेंगे कि समझ भरा प्रश्न है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो दूसरा व्यक्ति है हमारे साथ, यानी कि हमारी जो संगत है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। परेशानियाँ, उतार चढ़ाव लाइफ में सभी की आ जाती है। कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, जो उसका जो मोमेंट है, जो समय है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोरी देखता है। तो जब वो कमज़ोरी देखता है तो वो हल ढूंढ रहा होता है, और हल अगर परिवार में नहीं मिला और परिवार से अगर उसको नहीं मिला तो वो बाहर जाता है। उसी में ही अगर कोई व्यक्ति नशा लेता था, क्योंकि उसने उसके लिए तो उसके पास तो टेस्टेड थ्योरी हैगी, उसके पास एक टेस्टेड तरीका है कि मैंने नशा लिया तो मैं ठीक हो गया, तो वो जो बट उसके पास बड़ी लिमिटेड जानकारी है। और अगर आप जैसा व्यक्ति अगर कोई उसको मिल जाता है तो मैं समझता हूँ उसको ऐसी जगह रोक सकता है जहाँ पर वो उसको एंगेज करे, उसके साथ संबंध कनेक्ट करे, उसको एम्पावर करे, रिवाइटलाइज करे, यानी इसको हम कहते हैं ECPR, यानी कि उसको अगर हम उसके दिल जो टूटा है उसको अगर जोड़ने का प्रयास कर दें तो शायद उस दवा की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अभी वो इतना बीमार नहीं हुआ है। ये बहुत जिसको कहते हैं ना यूज की स्थिति है, अभी वो एडिक्ट नहीं बना है। और वही जो पहले 3-4 दिन है वही बड़े महत्वपूर्ण हैं। और अगर वो व्यक्ति जिसने, जैसे उन्होंने कहा, जो उसको प्रमोट कर रहा है या उसको सलाह दे रहा है, और अगर वो बार बार मिलता रहा, रीइन्फोर्स होता रहा, तो वाकई वो फिर एडिक्शन की तरफ और क्रेविंग की तरफ चला जाता है।
1: जी, तो बहुत जरूरी है इसमें कि आपने
2: जो पहले 3 दिन है,
1: जी, पहले के दिन है,
2: कि परिवार जो है उसकी तरफ ध्यान दे, मतलब जो उसमें बदलाव आ रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दे। गुमसुम है या बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ये दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जिसके अंदर वो, उसमें हमारे को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट तो मैं समझता हूँ बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन में ये समस्या नहीं आती। समस्या का वो हल ढूंढ रहा होता है, बच्चा कह लीजिए, युवा कह लीजिए, एडल्ट कह लीजिए, कोई भी।
1: तो क्या लक्षण है जो
2: लक्षण जो है इसके अंदर, जो पहली चीज तो यही आती है कि मैं अपने को अकेला, या मैं अकेले का मतलब है कि मैं अपने को अपना प्राइवेट स्पेस ढूंढता हूँ। तो प्राइवेट स्पेस में ऐसा कमरा भी हो सकता है जिसमें मैं बंद करके अपना पढ़ रहा हूँ, बट पढ़ रहा हूँ, हो सकता है प्रिटेंड कर रहा हूँ बट मैं ना पढ़ ना रहा हूँ। मैं टॉयलेट जाता हूँ और वहाँ 1 घंटा लगाता हूँ। तो वो जो समय है, क्योंकि नशा लेना ये भी अपने में प्रक्रिया है, और नशा लेने के बाद वो जो अपनी स्थिति, जो उनकी डिसओरिएंटेशन हो जाती है, उस स्थिति में वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, तो इसलिए वो अपने को अलग कर लेता है। एक तो ये आ जाता है, दूसरा ये कि जो उसकी आपने बदलाव एकदम देखा, जो एक्साइटमेंट, जो आपने, क्योंकि विचार दो ही तरह के होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा तेज हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हम स्लो हो जाते हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, सैडनेस की तरफ जा रहे हैं। तो वो एक स्थिति है कि जब हम उस, जिसको कहते हैं ना दिल टूटा है, दिल टूटने का मतलब यहाँ केवल प्रेमिका और प्रेमिका से नहीं है, माँ का कुछ कहना भी एक दिल टूटना का कारण बन जाता है, पिता का कहना या किसी काम करने वाले सहयोगी का कुछ कहना। तो वो जो टाइम है कि हम उस दिल को जोड़ सकें, कनेक्ट करके, और वो टाइम फिर उस ड्रग्स से बचा सकते हैं हम उसको। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बचाया जाता है और बचे
1: जी,
2: भी हैं।
1: इसीलिए हम इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं कि हम इस के जो अब्यूज को क्यों हो रहा है उसके कारणों को ढूंढें, और ना हो उसके लिए हम अपने श्रोताओं को मोटिवेट करें, हमारे जो कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानें, जो बहुत जरूरी है, डॉक्टर विष्णु गुप्ता आज हमारे साथ हैं, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता जानें कि ये सिर्फ आपकी मेंटल स्थिति को ही प्रभावित नहीं करता, आपके फिजिकल ऑर्गन्स को, आपको बॉडी को भी बहुत डिस्ट्रॉय कर सकता है। कि अगर कोई ड्रग्स ले रहा है वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं इसको अपनी सिर्फ समस्या से निकलने के लिए ले रहा हूँ, लेकिन ये मेरे शरीर को कैसे हार्म पहुंचा रहा है। तो बताएं कि किस तरह से बॉडी पे इम्पैक्ट करता है ड्रग्स।
3: देखिए, मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जो व्यक्ति ड्रग लेता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है। फिर मैं थोड़ा सा इसमें डीप में गया तो मुझे ये मालूम चला कि वो व्यक्ति बूढ़ा इसलिए नहीं होता है कि वो जल्दी मर जाता है। तो बूढ़ा होने की नौबत ही नहीं आती।
1: एक लाइन में आपने इतनी
3: बड़ी बात जो बोली, जो मैंने कल पढ़ी थी, कि आप कभी भी किसी ड्रग अब्यूज वाले पेशेंट्स को आप देखते हो तो आपको हमेशा वो मैक्सिमम 30-40, मतलब 40 तो बहुत मैक्सिमम मैंने बोल दी, 40 तक तो कभी पेशेंट मिलता ही नहीं है।
1: अच्छा,
3: या तो यंगर मिलेंगे, 12-13 से स्टार्ट हो जाते हैं, और 30-35 पे मैक्सिमम मिलता है। 30-35 के बाद में या तो वो इंसान वो ड्रग छोड़ चुका होता है या दुनिया छोड़ चुका होता है। ये दो लाइनें हैं जो इस पूरे क्रक्स को आपको बता देंगी।

0: कि उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने स्पष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा
0: वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जब भी कोई व्यक्ति ड्रग लेता है, किसी भी तरह का ड्रग लेता है, तो उसमें दो तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, एक तो इमीडिएट साइड इफेक्ट होते हैं और एक होते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। तो इमीडिएट साइड इफेक्ट बेसिकली वो जो इमीडिएट साइड इफेक्ट जो जिसको हम बोलते हैं ना, वो साइड इफेक्ट नहीं होते उस पेशेंट के लिए, वो एक बेटर इफेक्ट मतलब एक रिवार्डिंग इफेक्ट या रीइन्फोर्समेंट इफेक्ट होते हैं। जैसे ही वो ड्रग लेता है वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, यूफोरिया हो जाता है उसे, उसको लगता है कि मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया, मुझे एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा सेंसेशन उसकी बॉडी को लगता है। साथ ही साथ उसका क्या होगा कि आपको थोड़ी सी स्वेटिंग होगी, उसकी थोड़ी सी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, पेल्पिटेशन होने लगेगा, थोड़ी सा उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, चेहरे पे फ्लशिंग आ जाएगी, ये सब चीज़ें वो इमीडिएट होती हैं, जो धीरे धीरे जो लंबे टाइम तक ड्रग लेते हैं वो उनमें ये चीज़ें धीरे धीरे दब जाती हैं, क्योंकि उसमें टॉलरेंस डेवलप होने लग जाता है। लेकिन जो उसको खुशी वाला जो हिस्सा है वो उसका हमेशा आगे बढ़ता रहता है, उसको बस ये है कि उस खुशी को पाने के लिए वो ड्रग्स की डोज बढ़ाता जाता है या फ्रिक्वेंसी बढ़ाता जाता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए कि ये कोई भी ड्रग है, जो भी हम बॉडी के अंदर एक्सटर्नल चीजें लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होती है। चाहे अगर हम फूड की बात करें तो फूड भी जो यूजफुल चीज होती है उसे बॉडी हमारी एक्सेप्ट कर लेती है, बाकी जो बचता है उसे यूरिन या फीसिस के थ्रू बाहर फेंक देती है। उसी तरह कोई भी ड्रग अगर हमारी बॉडी में जाएगा, अगर वो सिंथेटिक होगा, नेचुरल होगा या सेमी सिंथेटिक होगा, किसी भी तरह का होगा, तो मेटाबोलाइज होगा ही होगा। मेटाबोलाइज होगा तो डेफिनेटली वो किडनी और आपके लीवर को अफेक्ट करेगा। किडनी में लॉन्ग टर्म में किडनी फेल्योर हो जाएगा, लीवर के अंदर लीवर फेल्योर हो जाएगा। सिमिलरली वो जो ड्रग्स होते हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं, तो इनिशियली आपके हार्ट के ऊपर पंपिंग लोड बढ़ता है, आपके हार्ट की वर्क कैपेसिटी बढ़ती है, तो धीरे धीरे आपके हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं और वो इन्फार्क्शन या यूं कहें कि हार्ट अटैक की तरफ भी चले जाते हैं। सिमिलरली जो ब्रेन होता है वो धीरे धीरे आपका जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। जब न्यूरॉन डीजनरेट हो जाते हैं तो आपकी मेमोरी इम्पेयर्ड हो जाती है, आपका कोऑर्डिनेशन डिक्रीज हो जाता है, आपका सोशल इंटरेक्शन दूसरों के साथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है, आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। फिर इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जो आपका सोशल जो सर्कल है वो छोटा होता चला जाता है। तो कोई भी ड्रग अब्यूज़ करता है या जो ड्रग एडिक्ट होता है या ड्रग डिपेंडेंट होता है, उस पेशेंट में वो अकेला अपना खुद का नुकसान नहीं करता, वो अपनी फैमिली का भी नुकसान करता है, अपने समाज का भी नुकसान करता है और अपने देश का भी नुकसान करता है।
1: बिल्कुल सही बात बोली, इसीलिए ये सबका ही दायित्व बन जाता है, क्योंकि सारे ही लोग ही इम्पैक्ट होते हैं। एक इंसान अगर ड्रग लेता है तो वो अकेला इम्पैक्ट नहीं होता है, उसके साथ उसके दोस्त, उसकी फैमिली, उसके कार्यस्थल के लोग, सभी लोग, कुलीग्स, पूरा सोसाइटी एज अ होल भी इम्पैक्ट होती है। तो बहुत जरूरी है कि इसके दुष्प्रभावों को हम जाने, उनको दूर करने की कोशिश करें। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं। हमें लिखा है सागर जी ने, विजयपुरा कर्नाटका से, 25 साल के हैं, उन्होंने लिखा है कि एडिक्शन स्पेशली इंटॉक्सिकेशन, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका कोई उपाय बताएं।
0: देखिए मैं तो ये कहूंगा कि आप एडिक्शन ही नहीं करिए ना, कि इंटॉक्सिकेशन के स्टेज तक पहुंचते क्यों है। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर मान लो कि जो चीज आपके लिए बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसका 1 ग्राम या उससे भी छोटी क्वांटिटी भी आपको लेनी क्यों, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन जब भी होता है या तो आप उसको रैपिडली लेते हैं या आप डोज ज्यादा लेते हैं। तो इंटॉक्सिकेशन से बचने का बेस्ट तरीका तो यही है कि आप उसको ले ही ना।
1: जी जी। और पैंथर तोमर जी लिख रहे हैं किशनगंज दिल्ली से कि मेथामफेटामाइन ड्रग क्या होती है और क्या भारत सरकार द्वारा भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोले जा रहे हैं। तो पहला तो सवाल मैं डॉक्टर विष्णु से करूंगी, दूसरा सवाल डॉक्टर सुनील जी आपसे करूंगी। मेथामफेटामाइन कौन सा ड्रग है?
0: मेथामफेटामाइन जो ड्रग होता है बेसिकली ये एक्टेसी ड्रग कैटेगरी के अंदर आता है। ये इसका रिफाइंड वर्जन होता है MDMA। ये जो बेसिकली ड्रग होता है ये वही अगेन यूफोरिक होता है, एक्टेटिक होता है, मतलब जैसे ही आप लेते हैं ना तो आपको एक हेलुसिनेशन में पहुंच जाते हैं, आपको लगता है कि एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है कि आप सोचते कुछ और है, हो कुछ और रहा होता है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं किस दुनिया में जी रहा हूं, मतलब एक एक्टेसी जो फीलिंग होती है, एक यूफोरिया की फीलिंग होती है, उस तरह की फीलिंग आने लग जाती है। ये सिंथेटिक ड्रग होता है,
1: इसीलिए शायद ज्यादातर डॉक्टर साहब जब लोग परेशानी में होते हैं, कोई उनकी समस्याओं से निकल रहे होते हैं, तब शायद इस दिशा पर ज्यादा जाते हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि एक यूफोरिया टाइप की कुछ फीलिंग है कि वो इंसान सच्चाई से कटकर कोई एक इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है।
0: शुरुआत कई बार जो ड्रग्स की होती है वो बेसिकली 2 तरीके से होती है, जैसे कि आपने बताया कि उसके जीवन में कोई समस्या है या उसको लगता है कि मैं एकदम से अकेला पड़ गया हूं या मेरा कुछ दिल टूट गया है या कुछ ऐसी चीजें होती है, तो वो उस चीज से भागने की कोशिश करता है बजाय उससे लड़ने की। और उस भागने की जो दौड़ होती है ना, उसमें वो सबसे पहला जो ऑप्शन चुनता है वो ड्रग्स चुनता है, चाहे वो सिगरेट के रूप में हो।

0: चाहे वो अल्कोहल के रूप में हो या फिर किसी सिंथेटिक या हशीश या गांजा या उसके रूप में हो।
1: जी जी, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे जो एक्सपर्ट्स वो भी कह रहे हैं कि समस्याएं सबकी जिंदगी में आती हैं। सुनील जी ने भी कहा कि कोई जिंदगी ऐसी नहीं है जहां समस्या ना हो, पर उसे फेस करना सीखिए और समाधान भी यही मिलता है। अगर आप उसको समाधान ढूंढे तो आपके दोस्त हैं, आपके सर्कल है, आपका समाज है, आपको मदद करने के लिए तत्पर है, पर आप सिर्फ अपना हाथ बढ़ाएं और सहयोग मांगे। हमारे एक लिसनर वेट कर रहे हैं। हेलो,
2: मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ।
1: जी जी जी जी राजेंद्र जी, हाँ जी बताएं।
2: पहले तो शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार।
1: जी नमस्कार राजेंद्र जी, आप अपना क्वेश्चन कर लें।
2: टॉपिक रिलेटेड दोनों एक्सपर्ट भाईबान को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
3: नमस्कार। नमस्कार
2: जी, मेरा पहला सवाल तो डॉक्टर साहब ये है कि पिछले 3 दिन से मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, कॉफी, तो मुझे भी अजीब सी बेचैनी घबराहट हो रही है, तो क्या इसको भी हम ड्रग में या नशा का ही एक पार्ट मानते हैं? पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल ये कि मैंने बचपन से बीड़ी पी, सिगरेट पी, पर आदत नहीं डाली, गुटखे खाए, समूह का आदत नहीं डाली, शराब पी, तो मेरे से किसी ने कहा कि अगर आप बीड़ी पियोगे तो उससे पेट की हाजमा दूर होता है, नाक से धुआं निकालोगे तो जुकाम दूर होता है, तो इससे किसी लोगों ने मुझे बीड़ी पीनी सिखलाई, और सिगरेट के लिए भी कुछ ऐसी कहा कि अगर नाक से धुआं निकालोगे तो आपका जो है वो जुकाम दूर होगा, पेट का हाजमा दूर, फॉर्टी जो है वो क्लियर साफ होती है। तो जब बीड़ी पी तो लोगों ने कहा आप सिगरेट पियो, गुटखे तमाऊ गुटखी खाई तो तमाऊ खाओ। अब दूसरा सवाल मेरा ये कि बीड़ी सिगरेट में से ज्यादा मेटअप नशा, ज्यादा खतरनाक नशा कौन सा है, और शराब और भांग में से और गुटखे और तमाकू में से? दूसरा सवाल मेरा है, दूसरा सवाल मेरा गुजारिश आपसे ये है, कई लोग ऐसे और थोड़ा सा रिलेटेड सवाल है कि 97 साल के लोग होते हैं फिर 70 साल के लगते हैं, और कई जो है 30 साल के होते हैं फिर 70 साल के लगते हैं, इसकी वजह क्या होती है?
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं डॉक्टर साहब। चाय कॉफी का भी कहते तो है नशा ही है, ये भी कहाँ तक सही है?
0: देखिए चाय कॉफी को नशा कहना थोड़ा सा मुश्किल है। देखा जाए तो चाय और कॉफी दोनों के अंदर कैफीन थोड़ा सा पाया जाता है, और कैफीन थोड़ा सा एनर्जी एनहेंसिंग करता है, मूड एलिवेट करता है, पर वो नशे की कैटेगरी में नहीं आता। तो चाय कॉफी को नशा तो कहना,
1: डॉक्टर साहब ये भी सुनते हैं जो कि वो भी एक लिमिट तक पिया जाए, क्योंकि कोई 20-20 कप अगर दिन में पी रहा है तो कहते हैं वो भी नुकसान ही करेगा।
0: तो हर चीज की वर्जितें हैं, आप किसी भी चीज की अति करेंगे, आप ज्यादा पानी पियेंगे तो वो भी नुकसान करेगा। लोग कहते हैं 50-30 गिलास पानी पी जाओ कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी किडनी पे भी लोड डालेगा। तो उसी तरह चाय कॉफी भी अगर आप ज्यादा पियेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको अफेक्ट जरूर करेगी।
1: जी, और दूसरा जो ये प्रश्न था कि बीड़ी सिगरेट, इन्होंने काफी सारे चीजों के नाम लिए,
0: उनके लिए एक लाइन सिर्फ ये है कि आपने जिन भी चीजों का नाम लिया उसमें से कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है, सारे सबके सब इन्फीरियर है। चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, चाहे अल्कोहल है, ये सारे के सारे जो चीज है वो किसी भी कैटेगरी के अंदर एक दूसरे से सुपीरियर नहीं कहे जा सकते।
1: जी,
0: जो चीज खराब है वो खराब ही रहेगी। आप एक चीज को सुपीरियर कह के या एक चीज को इन्फीरियर कह के आप उसको मतलब
4: केवल मन को बहला रहे हैं,
0: मन को नहीं बहला,
4: मन को बहला रहे हैं। और दूसरा ये कि क्योंकि तंबाकू है वो लीगल है, 18 साल के बच्चे अगर नीचे है तो उसके लिए लीगल है, इसलिए केवल हमें लगता है कि ये हल्का है, और क्योंकि वो इलीगल है, जितनी भी ड्रग्स की बात अभी डॉक्टर साहब ने कहा तो वो सारी की सारी इलीगल है, इलिसिट ड्रग्स कहलाती हैं, तो वो हमें बड़ी लगती हैं क्योंकि उसके पीछे एक पनिशमेंट जुड़ा हुआ है। बट कहीं ना कहीं अगर हम सेहत की बात करें तो चाहे वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जो केमिकल है वो हमारे को नुकसान, जैसे अभी एक पहले कॉलर ने कहा था एसीटोन का इस्तेमाल करते हैं, मेरा जो लाइफ में पहला जो ड्रग यूजर मुझे मिला 16 साल का बच्चा, वो पेट्रोल को स्निफ करता था। तो अब ये सवाल ये नहीं है कि कौन सा नशा वो ले रहा है, सवाल ये है कि वो बच्चा या व्यक्ति क्या खोज रहा है,
0: जबकि पेट्रोल मतलब ड्रग में भी नहीं आता,
4: ड्रग में भी नहीं,
0: अब्यूज में भी नहीं आता
4: ड्रग अब्यूज, और वो एसीटोन है जैसे उन्होंने कहा जो हम नेल पॉलिश के लिए और जो करेक्शन फ्लूड का इस्तेमाल करते हैं उसको हफिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जो बच्चा है सड़क पर, उसके लिए जो दर्द भरा वहाँ का माहौल है और जो जद्दोजहद रोज की, उसको लगता है कि मैं अगर ये हफिंग लूंगा और मैं अगर ये एसीटोन लूंगा जो कि आसानी से मिल जाता है उसको और सस्ता होता है, तो नेचुरली अफोर्डेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, एक्सेप्टेबल भी है, तो वो तीनों चीजों में जहां पर ऐसा हो जाता है तो फिर उसको लगता है कि मेरा शायद इससे समस्या, क्योंकि उसकी खाने की समस्या तो है ही सामने।
1: हाँ जी।
4: एक बात और मैं कहूंगा कि केवल समस्याओं के लिए लोग नहीं युवा ले रहे, आज वो फन के लिए भी, पार्टी के लिए भी ले रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं हमारे कोई सेलिब्रेशन का मतलब होता है एक्साइटमेंट, यानी कि जहां मेरी

0: पल्पिटेशन बढ़े तो मुझे लगेगा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर मेरी कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट यानी कि तेज म्यूजिक बजेगा तो मैं बहुत खुश हूँ। तो जो एक खुशी की जो डेफिनेशन है, जो प्लेजर और हैप्पीनेस में जो फर्क कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, तो वो भी एक कारण बन रहे हैं इस तरह के रिस्की बिहेवियर के जाने में।
1: जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आज हम कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर में, ड्रग एब्यूज पर बात कर रहे हैं। आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, हम लौटते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। पुनः आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं और मेरी तो ये उम्मीद है कि आप कहीं गए ना हो, क्योंकि ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 3 बजे और ख़त्म होगा 4 बजे, और इस बीच में बहुत सारी जानकारियां आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है, आता रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्रग्स पर, हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं, हम एक एक करके मैसेजेस लेना शुरू करते हैं। ये हमें लिखकर भेजा है, लिखने वाले हैं आकांक्षा ने लिखा है फरीदाबाद हरियाणा से, कि हाउ डज ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग स्पेशली इम्पैक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, एंड व्हाट आर द यूनिक चैलेंजेस दे फेस इन रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। आपसे जानना चाहूंगी सुनील जी।
1: देखिए, महिला चाहे वो माँ हो, बहन हो, मौसी हो, परिवार का कोई भी अंग हो, तो उसका जो ब्रंट है, जो उसका जो नशे की समस्या का जो सबसे पहला गेट कीपर है, वो माँ ही होती है। और अक्सर क्या होता है कि जो उसका असर है, तो यहाँ पर दो तरह हैं, या तो परिवार में कोई ले रहा है तो महिला पे असर पड़ रहा है, और अब महिलाओं में भी इसका प्रचलन बढ़ गया है, तो वो जो प्रचलन बढ़ा है उसका भी असर है। अभी डॉक्टर साहब उस बारे में और ज़्यादा अच्छा बताएंगे कि अल्कोहल या ड्रग्स अगर महिला लेती हैं तो उनके मेटाबॉलिज्म पे क्या जल्दी असर होता है या देर से होता है, एक तो ये बात आती है। मगर जो दूसरा सवाल आता है वो ये कि अगर मेरे से अगर पूछें कि मेरे पास 10,000 लोग नशे के इलाज के लिए आए

0: एक भी जो भी कोई आया तो सबसे पहले महिला पहले आई, क्योंकि उसका असर जो है सबसे पहले उसी पर पड़ रहा है, क्योंकि आपकी इनकम पे फर्क पड़ता है अगर पति ले रहे हैं। दूसरा आता है कि मैंने तो उसी को ही करना है। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ जाता है, और जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है आप देखेंगे तो उसके अंदर भी महिला पे ही उसका असर पड़ रहा है। बच्चे हैं, बच्चे पीछे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी नशा ले रहा है व्यक्ति, क्योंकि इसलिए नहीं कि नशे में कुछ ऐसा है, बल्कि ऐसा है कि वो परिस्थितियां ऐसी बननी शुरू हो जाती हैं कि जहां पर वो फ्रस्ट्रेशन अगर कहीं निकाल सकता है तो वो महिला पे निकालता है। तो वो जो उसकी वल्नरेबिलिटी है, चाहे वो बच्चों की बात हो, आकांक्षा ने जो बहुत अच्छा प्रश्न करा है, और मैं समझता हूं कि एक मैंने ऐसे बहुत सारे परिवारों का इलाज किया है जहां नशे वाला व्यक्ति इलाज के लिए तैयार नहीं था। हमारा जो थीम है वो भी यही है, रेडीनेस की बात है। तो क्या करते हैं हम कि जब वो व्यक्ति इलाज के लिए तैयार नहीं होता है तो फिर हम फैमिली के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे मैं केयर गिवर स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, जब हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, फैमिली डिसफंक्शन से फंक्शनल बननी शुरू हो जाती है, तो उसका असर परिवार पर फर्क पड़ने लगता है, यानी कि उस एडिक्ट जो व्यक्ति है वो खुद, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मजबूती, इसलिए आपने कई ऐसी न्यूज देखेंगे कि माँ को मार दिया, किस लिए, क्योंकि उसको पैसा चाहिए था नशा लेने के लिए, उसने उसका बहन को मार दिया। तो ये जो है, क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं महिला और बच्चे जो है, और इसीलिए अक्सर देखा गया है कि अगर कहीं दूर देश से बच्चे जो भाग के आते हैं उनके पीछे भी कारण देखा गया है कि नशे के परिवार में नशा होना एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। तो जो स्ट्रीट चलन आप देख रहे हैं वो सड़कों पर, और वो भी उनका एक बहुत बड़ा कारण, परिवार में नशा एक कारण बन जाता है।
1: तो फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है, हम शुरू से बात कर रहे हैं। और अगर जो नशा करता है अगर वो नहीं जाना चाहता या अपना इलाज नहीं कराना चाहता, तो फैमिली कैसे आगे बढ़कर उसका हेल्प कर सकती है? क्या कोई फोन नंबर है, कोई वेबसाइट है जहां से वो कॉन्टेक्ट करे, हेल्प मांगे?
0: देखिए, गवर्नमेंट की जो अपनी, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस कहें, तो उन लोगों ने नशा मुक्त अभियान जैसे शुरू किया है, उसके अंदर खासतौर से देखें ऐसी हेल्पलाइन और ऐसी व्यवस्था की है कि वो लोग जब वहां पर पहली बार, क्योंकि पहले तो जानकारी होना बहुत जरूरी है, दूसरा ये कि ऐसा मौका ही क्यों आए कि वो व्यक्ति जब पूरा ड्रग यूजर, यानी कि ड्रग यूजर से ड्रग एडिक्ट बन जाता है, जिसमें तकरीबन 3 से 4 साल लग जाते हैं, वो इतना समय क्यों कर लगे? वही व्यक्ति बहुत जल्दी से पहुंचाया जा सकता है अगर हमारे जागरूक हैं। कई बार क्या होता है कि हम समय इस पर निकाल देते हैं कि मैं कहीं खास रिलीजियस जगह पे जाऊंगा तो उससे शायद ठीक हो जाएगा। कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि शादी कर देते हैं कि शायद शादी हो जाएगी, क्योंकि हमें लगता है कि शादी करने से सारी समस्याओं का हल हो जाता है, जबकि वहाँ समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण बनते चले जाते हैं, एनेबलिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं, जिसके कारण व्यक्ति नशे की तरफ, जिसको कहते हैं रुकावटें बनती चली जाती हैं, और डॉक्टर के पास तब पहुँचना चाहिए था, वहां उस समय नहीं पहुंचे, बल्कि उस समय पहुंचे जब तक समस्या और बढ़ चुकी।
1: हम इस पर और बात करेंगे, हमारे एक लिसनर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैडम
1: जी। नमस्कार।
2: हाँ जी, मेरा नाम संजीव कुमार, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ मैडम, गांव कुखनी।
1: हाँ जी,
2: डिस्ट्रिक्ट करनाला है जी।
1: जी जी, बिल्कुल स्वागत है, बताएं क्या पूछना चाहते हैं
2: जी। मैडम जी, मैं मतलब दिमाग के दवाइयां लेता हूँ कई सारी, काफी सालों से, 23 साल से, 2002 से, इनके बगैर तो नींद आती नहीं मैडम। सारी सारी रात जैसे कभी 3:30 बजे सोएंगे, कभी 3 बजे सोएंगे, और बीपी और शुगर भी है मैडम। अब तो प्लीज आप ये बताइए भाई, ये एल्प्राजोलम और ये क्लोनाजेपम, क्या इसमें मतलब नशे वाली कैटेगरी में आती हैं?
3: देखिए, ये जो दोनों ड्रग्स आपने बताई, ये बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की ड्रग्स हैं, और ये भी नशे की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन आप एक चीज समझिएगा कि जो ड्रग्स हैं वो अगर आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज की जा रही है तो फिर आप उसको ड्रग की तरह ट्रीट मत करिए। लेकिन अगर आप उसको अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो आपके लिए ड्रग बन जाता है।
0: बस इसमें मैं ये इतना ही कहूँगा कि आपका जो डॉक्टर साहब ने लिखा है ये भी देख लीजिए कि कब तक के लिए लिखा है और कितनी क्वांटिटी में लिखा है। अगर आप उसका पालन करके कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब से मिलें और उसमें रिवाइज करें, उनको सलाह दें कि मेरे को इस पे क्या असर हो रहा है, तो वो शायद उसको रिविजन कर सकते हैं।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और जिस तरह से वो आपको एडवाइस करते हैं आप वैसा ही करें। और हमारे पास ये मैसेज आया है, नवप्रीत कौर जी ने पंजाब से लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ ड्रग अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन एजुकेशन शुड बी इंटीग्रेटेड इन स्कूल करिकुलम टू इफेक्टिवली इन्फॉर्म एंड प्रोटेक्ट यंग पीपल। बहुत जरूरी है लोगों को, बच्चों को इन्फॉर्म किया जाए, बच्चों को बताया जाए। तो हम बहुत विस्तार से तो नहीं बात करेंगे क्योंकि ये रेडियो डॉक्टर है, यहाँ पर हम स्वास्थ्य संबंधी ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की आवश्यकता जरूर है कि लोगों को इस बारे में बताया जाए कि ड्रग के क्या नुकसान हैं। कुछ कहेंगे आप?
0: मैं इसमें एक छोटा सा अपना, क्योंकि जो नाडा इंडिया फाउंडेशन है वो लोग, हम लोग

0: में कार्य कर रहे हैं
1: जी,
0: खासतौर से युवाओं के साथ काम करें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिन पे असर हो रहा है या जिनको टारगेट किया जा रहा है उन्हीं को ही हम असरदार बनाएं। तो मैंने देखा कि ऐसे सैकड़ों हमारे साथ युवा लोग जुड़े हैं, अलग अलग, चाहे जमशेदपुर से हो, शिमला से हो, इस तरह से अलग अलग जगह से, और एक हेल्दी कैंपस का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया है, जिसके अंदर ये व्यक्ति खुद एक अप्रिशिएटिव इंक्वायरी करते हैं, यानी कि अपने एरिया में देखते हैं कि हमारा जो कैंपस है वो कितना स्वस्थ है, जिसमें ड्रग भी आती है, अल्कोहल भी आती है, टोबैको भी आती है, यानी कि हम उसको खुद देखें और वो खुद इसमें इन्वॉल्व हों। जब मैंने देखा कि युवा लोग खुद जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो ज़्यादा असरदार होते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और ज़्यादा उनकी पहुँच पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचने के लिए या अपने प्रिंसिपल तक पहुँचने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए करिकुलम में केवल ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना हो, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका हिस्सा होना चाहिए, और जो इंटर्नशिप आजकल मैंने देखा कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में होती है, तो ऐसी सिविल सोसाइटीज़ के साथ अगर आप जुड़ते हैं

0: या अपने प्रिंसिपल तक पहुंचने के लिए वो बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए करिकुलम में केवल ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना हो, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका हिस्सा होना चाहिए। और जो इंटर्नशिप आजकल मैं देखा कि स्कूल्स में कॉलेजेस में होती है, तो ऐसी सिविल सोसाइटीज़ के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप अपने को और ज़्यादा अपने को लाभान्वित कर पाते हैं और नशा मुक्त कर पाते हैं। तंबाकू कोटपा एक्ट में बिल्कुल मना है कि उसका बिकना या उसके आसपास का 100 गज की दूरी पे। उसी तरह से नशा किसी भी तरह का अगर बिकता है तो वहाँ का जो कैंपस का जो व्यक्ति है इंचार्ज, मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। और चाहे बट अक्सर क्या होता है कि स्कूल में नहीं मिलेगा, बट स्कूल से 500 मीटर की दूरी से थोड़ा सा परे मिल जाता है।
1: चलिए एक और हमारे लिसनर लाइन पर हैं, क्योंकि मैसेजेस भी बहुत सारे हैं तो थोड़ा हमें जल्दी करना पड़ेगा। हेलो,
2: हाँ जी,
1: जी जी बताएं।
2: जगजीत सिंह है मेरा
1: जी
2: नाम।
1: जी जी, अपना प्रश्न करें।
2: हम ये पता करना चाहते हैं कोई ऐसा नशा भी है जो शरीर में थोड़ी ताकत देता हो कभी कभी लेने से।
1: हम यहाँ बात कर रहे हैं कि नशा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, और ताकत के लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको टॉनिक्स देंगे और वो ही लें जो डॉक्टर कहें, बस वो ही लें। इसके अलावा अगर अपनी तरफ से आप कोई ड्रग को ट्राई करते हैं तो ये आपके शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। धन्यवाद।
3: एक लाइन में इसमें ऐड करना चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल।
3: मैंने मतलब कई लोगों से सुना है और कुछ लोगों में मेरे कुछ पेशेंट्स ने मुझे बताया भी है कि कुछ तरह का नशा करने से सेक्सुअल पावर एनहेंस होती है। ये आप कहिए कि सही बात है या गलत बात है, ये आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। शुरुआत में हो सकता है कि क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये एक एनर्जी एनहेंसर की तरह काम करते हैं, तो हो सकता है कि आपको एक सेक्सुअल विगर या कुछ जो है वो आपको बढ़ा दें, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे वो आपको जकड़ लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो आप पूछना चाह रहे थे ना कि कोई ऐसा ड्रग है या कुछ ऐसी चीज़ है जो कभी कभी ले लें, तो ये जो कभी कभी वाला वर्ड शुरू होता है ना, यही आगे चल के रोजाना में कन्वर्ट हो जाता है।
1: तो बिल्कुल नहीं।
3: तो मेरा कहना ये है कि कभी कभी आपको वर्ड यूज करना ही नहीं है।
1: जी जी बिल्कुल। और ये मैसेज हमारे पास आया है, चेतन जी ने लिखा है उदयपुर राजस्थान से, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी यूथ को वल्नरेबल कर देते हैं कि वो ड्रग अब्यूज या इसमें इन्वॉल्व हो, या कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो हम इस बारे में बात कर चुके हैं काफी विस्तार से, हमें सुनील जी ने बताया था किस कारण से यूथ आज का बढ़ रहा है नशे की ओर। इसके अलावा ये प्रश्न हमें भेजा है कि क्या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का भी कुछ रोल हो सकता है अर्ली इंटरवेंशन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज, पर्टिकुलरली इन आइडेंटिफाइंग एट रिस्क इंडिविजुअल्स, लिखकर भेजा है श्रेया मिश्रा जी ने।
3: देखिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का रोल डेफिनेटली होता है, लेकिन मेरे ख्याल से हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पहले रोल जो होता है वो घर का होता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने सबसे पहले जो चीज बताई थी कि आपके घर में कोई ड्रग ले रहा है, मतलब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा 2 साल से ड्रग ले रहा है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि क्या आपने 2 साल में कुछ ऐसा एबनॉर्मल चीज नोटिस नहीं की आपके घर के अंदर कि आपका बच्चा ड्रग ले रहा है? तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब जैसे कि भाई कभी आपका बच्चा घर आया और आपने देखा उसकी आंखें लाल हैं, आपके घर में घुसा, आपसे आई कांटेक्ट नहीं किया, बात नहीं की, चुपचाप अपने कमरे में सीधा जाके बैठ गया, अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया, फिर आप जो फैमिली जो डिनर होता है या फैमिली लंच जो आप करते हैं उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अपना खाना उठाएगा लेके वहां चला जाएगा, आपने देखा कि वो टॉयलेट्स में अपना टाइम ज्यादा बिता रहा है, आप कभी उसके रूम में जाते हैं तो आपके अपने रूम में वो घुसने को अलाउड नहीं करता, आप कभी उसका बैग चेक करना चाहते हैं तो बैग नहीं चेक करने देता, आप उसका मोबाइल खोल के देखना चाहते हैं तो मोबाइल नहीं खोलने देता, वो कहता है कि प्राइवेसी है। तो ये भी तो हो सकता है कि उस प्राइवेसी के नाम पे और कुछ बैकग्राउंड में कुछ चल रहा हो। आपने देखा कि आपका बच्चा आपसे महीने में 1000 रुपए पॉकेट मनी मांगता है, 500 पॉकेट मनी मांगता है, अचानक से उसकी डिमांड होगी कि मुझे रोज के 200-300 रुपए चाहिए या महीने के मुझे ज्यादा चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके घर में हो सकता है कि कोई ड्रग अब्यूज या ड्रग डिपेंडेंसी डेवलप हो रही हो। जब आपके घर में अगर आप ये चीज पहचान लेंगे तो आप उसको डॉक्टर के पास या जो भी डी एडिक्शन सेंटर है या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसके पास लेके आएंगे, उसके बाद में हेल्थ केयर प्रोफेशनल का रोल शुरू होता है। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल का रोल जो होता है वो बेसिकली 2 तरीके से होता है, या तो वो ड्रग्स देगा, ड्रग्स का मतलब मेडिकेशंस जो उस ड्रग्स के लिए इस तरह से करती हैं कि जैसे आपने अल्कोहल ली या आपने स्मोक किया तो उससे जो प्लेजरेबल इफेक्ट होता है, जो एक खुशी की सेंसेशन होती है, उसको वो प्रोड्यूस नहीं होने देता। तो इस तरह के ड्रग्स होते हैं कि वो सेंसेशन आपके शरीर में आएंगे ही नहीं, तो आपको लगेगा यार इसको तो लेने का कोई फायदा ही नहीं।
1: अच्छा।
3: दूसरा होता है जो आपको वो काउंसलिंग करता है, एक पीयर ग्रुप्स से मिलाता है कि भाई ये आपका एक एल्कोहल एनोनिमस ग्रुप है या इस तरह का जो स्मोकर ग्रुप्स है, इसमें आपको इंट्रोड्यूस करता है, वो बताता है, क्योंकि आप जब तक अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, आप

0: को पता कैसे चलेगा कि उसको उससे कितना फायदा हुआ? जब आपने ड्रग पहली बार ली तो उसने भी तो आपको शेयर किया था कि यार मैंने ये ले रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और आपने उसको रिपीटेडली रीइन्फोर्स करके आपने उसको रेगुलरली शुरू किया और आप ड्रग एब्यूजर बन गए। तो आपका जो दूसरा ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप होगा जो आपको ये बताएगा कि ये जो चीजें लेते हैं इनसे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे इमोशंस कैसे इफेक्ट होते हैं, हमारी फैमिली कैसे इफेक्ट होती है। तो आप उस ग्रुप में जाइए। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक ब्रिज की तरह काम करता है, वो आपको डिटॉक्सिफाई भी करता है, एक उस ब्रिज तक भी लेके जाता है जो आप उस पीयर ग्रुप में लेके जाता है जो लोग उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात ये, और उस तरह के ग्रुप्स में शामिल होने की कोशिश करिए। और राशिद खान जी लिख रहे हैं मेरठ से कि मैं मैम स्मोकिंग करता हूं और वो भी ओवर लिमिट करता हूं, डॉक्टर साहब क्या सॉल्यूशन देंगे? मुझे लगता है इनको खुद पता है इनकी समस्या, तो क्या कहने?
0: देखिए, ओवर लिमिट और लिमिट तो कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहले तो स्मोकिंग जो क्विट करने के लिए, मतलब जो मेथड्स होते हैं वो ये है कि आप पहले एक डेट डिसाइड कीजिए कि मुझे क्विट करना है, चाहे वो आज से 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद की हो। उस डेट से पहले का जो टाइम होता है उसमें कुछ निकोटिन रिप्लेसमेंट पैचेज आते हैं, कुछ गम्स आती हैं, कुछ स्प्रे भी आते हैं, इनहेलेंट भी आते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स भी हैं, नई ड्रग्स भी इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट के अंदर, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्या, जैसे निकोटिन रिप्लेसमेंट जो पैचेज या गम्स होती हैं वो आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा निकोटिन जाने देती है और आपके में जो क्रेविंग होती है उसको प्रोड्यूस नहीं होने देती। तो उनका तरीका यही होता है कि वो जो क्रेविंग होती है आपकी, जो एक कि भाई मुझे अब पीना ही है, खाना खाया, मुझे एक सिगरेट तो फूंकनी है, या मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और इस रास्ते में मुझे थड़ी पड़ती है, यहाँ से मुझे एक सिगरेट लेके पीनी है, तो उस क्रेविंग को धीरे धीरे कम करते हैं।
1: तो इस तरह से ये तरीका अपना,
2: मगर ये भी ध्यान रखा जाए कि कई बार वो रिप्लेसमेंट थेरेपी में उसका भी वो एडिक्ट बन जाते हैं, तो यहाँ पर भी डॉक्टर का और मेडिकेशन का, प्रिस्क्रिप्शन का बहुत जरूरी ध्यान रखना जरूरी है।
0: ओवर द काउंटर यूज
2: मतलब ना करा जाए कि जब और जैसा भी मुझे मिला और दवाई को अब्यूज करने लगे।
1: किसी ना किसी एक एडवाइजर या डॉक्टर या थेरेपिस्ट के
0: टच में जरूर रहना, उसके सुपरविजन में ही ये काम करना है।
2: और ऐसी क्विट हेल्पलाइंस भी अवेलेबल हैंगी और ऐसे क्लिनिक्स भी हैंगे, खासतौर से जितने भी डेंटल हॉस्पिटल्स हैं आप वहां देखेंगे कि टोबैको क्विट अभी, बल्कि सरकार को हमारे को एक ग्लोबल एक वो भी मिला है, अवार्ड भी मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इसी काम के लिए, टोबैको क्विटिंग प्रोग्राम के लिए।
1: जी, और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि हेल्पलाइन भी है, जिस हेल्पलाइन पर आप जुड़ सकते हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स के बारे में बात हो सकती है, 1-444-6 ये नंबर है, 1-444-6। और इसके अलावा नशा मुक्त भारत की एक वेबसाइट है जो भारत सरकार की, उस पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको यहां से मिल सकती है। ज्योति हमें लिख रही है विजयपुरा कर्नाटका से कि इंटॉक्सिकेशन जब हो जाता है तो उसको किस तरह से इमीडिएटली क्या दवाई दी जा सकती है, ये डॉक्टर्स हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें लिखकर भेजा है, ये एक बहुत अच्छी बात लिखी है नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से, इन्होंने सिर्फ लिखा है कि कार्यक्रम में उन्हें पसंद आया, बहुत सारी जानकारी मिली, सबसे पहले इस विषय को लाने के लिए धन्यवाद, और नशे के कारण मैंने कई परिवारों को बर्बाद होते देखा है, इसका खामियाजा पत्नी और बच्चे भुगतते हैं, इससे परिवार वालों को जो नुकसान होता है वो डॉक्टर साहब ने जो सलाह दी है वो हमारे बहुत काम आ रही है, तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं हमारे श्रोता। एक राजकुमार जी लिख रहे हैं नोएडा से कि क्या खसखस और पोस्ता भी ड्रग की कैटेगरी में आता है डॉक्टर साहब?
0: डोडा पोस्ट जो है वो तो ड्रग की कैटेगरी में आता है, अफीम का प्रोडक्ट होता है
2: और वो इलीगल है।
0: इलीगल है
2: कि उसके अगर आपका पोजीशन होता है तो आप उसमें गिरफ्तार हो सकते हैं,
0: प्रोसिक्यूट भी।
1: जी, और रणधीर गुप्ता बबीता रानी,
2: खसखस नहीं आती,
1: खसखस नहीं आता है। जी,
2: ठंडाई में काम आता
1: है। रणधीर गुप्ता और बबीता रानी गुप्ता हमको लिख रहे हैं कि आजकल बाजार में एनर्जी ड्रिंक भी बिक रहा है, मतलब लोगों की क्यूरियोसिटी है, बहुत अच्छी बात है, हम जानना चाहते हैं इस बारे में, तो क्या ये भी नुकसान करता है?
2: ये सबसे बड़ा ये नुकसान ये करता है कि एक एनर्जी ड्रिंक आपकी 25 कप के बराबर कॉफी के उसमें कैफीन होती है, तो आपको लगता है एक रश होता है जो डॉक्टर साहब ने अभी जैसे बताया, और धीरे धीरे आप उसके एडिक्ट बन जाते हैं। तो ये एक गेटवे ड्रग है, यानी कि आप लीगली जो चीज़ अवेलेबल है पहले आप उसको एनर्जी ड्रिंक के रूप में लेते हैं, कैफीन है, क्योंकि कैफीन सीधा एडिक्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं, बस इतना ही फर्क है कि ये एक्सेप्टेबल है और अफोर्डेबल है और अवेलेबल भी है, और क्योंकि हम लोग भी पीते हैं तो कई बार हम मान लेते हैं कि वो एडिक्टिव नहीं है, मगर कहीं ना कहीं तो हमें विचार आता ही है कि यार आज हम मिस कर रहे हैं उसको।
1: जी, तो बहुत सारी बातें आज के कार्यक्रम में मुझे लगता है हम समेटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बातें ज्यादा है, समय कम है, और अब समय हो गया है कि हमें कार्यक्रम को समेटना पड़ेगा। एक अगला मैसेज

0: जो है, बस मैं नाम ले लेती हूँ, ललित भाटिया जी ने लिखा है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई ड्रग एडिक्ट है। तो बहुत सारी बातें अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने सुनी हो, हमारा कार्यक्रम सुना हो, तो आप जान जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने लक्षणों पर भी बात की
1: बिल्कुल
0: थी। तो अब इतना ही समय है कि हम अपने जो आज की विशेषज्ञ, उनको धन्यवाद दें। हमारे साथ रहे डॉक्टर विष्णु गुप्ता, CMO @CGHS एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और साथ में थे सुनील वात्सायन, आप एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, चेयरपर्सन हैं नाडा इंडिया फाउंडेशन न्यू दिल्ली के। बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों ने समय निकाला है, आप यहाँ आए हैं।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आज के दिन शुभ हो।
0: बहुत
2: नमस्कार।
0: तो सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਨੇਮਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ
1: जी। दोस्तों, ये फिल्म डायरेक्ट की थी जी डेविड धवन ने। स्टारकास्ट है जी वरुण धवन, पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर। फिल्म एक यंग मुंडे की लव लाइफ ते फैमिली सिचुएशंस नू कॉमेडी दे अंदाज विच पेश करती है। रोमांस, कन्फ्यूजन, फैमिली ड्रामा ते डेविड धवन दे स्टाइल दी कॉमेडी ता जबरदस्त तड़का लगा रही है इस फिल्म दे विच। तुहानू की लगता है भूमि, ये फिल्म देखने जाना चाहिए?
0: बिल्कुल शिम, जाना तो चाहिए ही है। तो दोस्तों, इस दे नाल होर कई सारी फिल्मां ने जिहड़ी असीं तुहाडे नाल गल्लां बातां करांगे ते तुहानू दस्सांगे जी तुसीं किहड़ी देखण जा सकदे हो। जेकर तुसीं कॉमेडी भी वेखना चाहते हो तो रोमांस भी वेखना चाहते हो तो यह फिल्म तुसीं जरूर देखण जाओ।

0: फेयर जी,
1: बिल्कुल
0: उसे ना
1: बिल्कुल
0: एक ना शिमला जी बहुत ही मशहूर बाजार है,
1: जी।
0: जौहरी बाजार।
1: ओए होए होए
0: ते जौहरी बाजार दे विच जेम स्टोन्स, कुंडन जेड़े ने ज्वेलरी दे, सिल्वर आइटम उत्थे बहुत ज्यादा फेमस है।
1: जी,
0: असि उत्थे बापू बाजार भी गए।
1: क्या
0: बहुत
1: बात
0: वधिया, पर
1: है।
0: पूरी
1: पूरी शॉपिंग करके आए हो।
0: पूरी शॉपिंग करके आए।
1: शॉपिंग ते होगी जी, ते फिर तुसी खाने जो थे की खादा ते तुहानू सब तो ज्यादा पसंद की आया उत्थे?
0: उत्थे सब तो ज्यादा जेड़ी चीज मेनू पसंद आई ओ सी, एक थां है उत्थे रावत की प्यार कचौरी।
1: ओए होए होए होए होए होए,
0: ते जयपुर आके जेकर तुसी ओ नहीं खादा तो मतलब कुछ भी नहीं खादा।
1: तुहाड़ियां गल्लां सुन के ना तो मेरे मुंह च पानी आ गया, तो मेरा भी दिल कर रहा कि मैं फटाफट उत्थे जावां ते ये जरूर खावां।
0: ते होर उत्थे असी चौकी धानी खाई, ट्रेडिशनल विलेज रिसोर्ट है उत्थे, उत्थे
1: जी
0: जाके ये चीज दाल बाटी चूरमा,
1: ओए होए होए
0: इनू
1: होए,
0: असी चौकी दानी भी कह दिने आ, ते बड़ा टेस्टी सी। होर बस मेमोरी दी बनाइया शिवम जी ते भूमि जी उत्थे, होर तो कुछ नहीं, बस एंजॉय कीता।
1: मैं
0: वाह जी,
1: ऐसे यही चाहते हैं, दुआ करते हैं कि तुसी इदां ही मेमोरीज बनाते रहो, ते घूमते फिरते जाते रहो, ते युवाणी टूर्स एंड ट्रैवल्स भी सुनते रहो, कॉल करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम दे विच जुड़न लई।
0: जी।
1: जी दोस्तों, तुसी भी जुड़ सकते हो प्रोग्राम दे विच, तुसी कुछ नहीं करना है, कॉल ही तो करना है 0818-2342-174 ते
0: 01-812-342-174 ते फटाफट सानू कॉल करो ते दसो जी अपने एक्सपीरियंसेस ते हुणे ट्रैक एंजॉय करो क्योंकि असीं गल कीती है जी राजस्थान दी।
1: जयपुर दी ते खास करके गुलाबी सिटी दी।

0: जी बहुत ही ज़्यादा लव लव दी गल हो गई है, तो तुहानू दस दिए कि 6 बजे आ जाना है जी प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो उस तो पहलां जी तुहानू दस दिए कि गल्लां करदे करदे टाइम किद्दां निकल गया पता ही नहीं लगा।
1: बिल्कुल शिवम, मैनूं तो लगता सानू काफ़ी ज़्यादा इंजॉय ते मज़ा आया तुहाडे नाल गल्लां बातें करके, कि तुसीं भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा साढ़े नाल गल्लां बातें करके। जिन्हां दी कॉल नहीं लगी कोई गल नहीं जी, कल शाम 5 बजे फिर मुलाकात होएगी, उदों तक लई मैनूं आरजे भूमिका नूं,
0: मैनूं आरजे शिवम नूं
1: दिओ इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी जनता ए रेनबो चैनल है। शाम दे 7 बजे ने ते पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।

मैके जी बस इस समय दी तारीफ करिए या फिर साडे स्रोतों के प्यार के बस आप भी खिंचे चले आने हैं तो हाडे सारे वास्ते। तो फिर अज मैं ही नहीं आई हाँ, फिल्मी दुनिया दिया बहुत सारिया चीज़ा बहुत सारे अपडेट्स थोड़े वास्ते लेके आई हाँ। किसी कहानियां का एक प्रोग्राम फिल्मी दुनिया, साड़ी जी जिंदगी है ना असल जिंदगी वह भी एक फिल्म ही है। कदे जो सोचते हैं वह मिलता नहीं तो कदे बिना सोचे वह चीज़ा मिल जाती हैं कि दिल विच बस शुक्र ही निकलता है प्यार ही निकलता है उस कुदरत नू बनाने वाली उस कायनात दे मालिक दा। मैं कह रही गलबात करिए फिल्मी दुनिया के सितारे की जिस बारे अज असीं गलबात करनी है क्योंकि अज इस सितारे का हैप्पी वाला बर्थडे भी है जी। दोस्तों सुजीत कुमार की जेकर गल करिए 26 जून 1934 में पैदा हुए सुजीत कुमार का असली नाम शमशेर बहादुर सिंह सी। तो सिर्फ एक अदाकार नहीं सी, एक हीरो के नाते तो बेशक फिल्मों के आए पर उसके नाल ही बहुत सारे अलग अलग किरदारों के उन्होंने दर्शकों मनोरंजन दिता अपनी फिल्मों की कहानियों के राही जिस विच वो एक वफादार दोस्त एक पुलिस अफसर खलनायक हर एक किरदार के उन्होंने इन्नी जान भरी कि वह बेमिसाल किरदार बन गए। पर की तुसी जानते हो यह शख्स भोजपुरी सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी मनिया जाता है। जी हाँ सुजीत कुमार साहब की ही गल कर रही हाँ। तो दोस्तों गलबात करिए हिंदी सिनेमा के असल विच सफर दी, ता हिंदी सिनेमा का सफर शुरू किस तरह होया।

नमस्कार, एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। रात दे 8 बज रहे ने ते पेश है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह ने अज नवी दिल्ली च नारको तालमेल केंद्र की 10वीं सिखर पदरी मीटिंग की प्रधानगी की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना साडी सारयां दी जिम्मेदारी है। भारत ने औरतों के एसईओ फोरम विखे औरतों की अगवाई वाले विकास प्रति वचनबद्धता की पुष्टि की। दूजे पैक सिलिका सम्मेलन विच भारत ने 34 होर देशों के नाल आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तकनोलॉजियां नूं मजबूत बनाने लई अमरीका की अगवाई वाली पहलकदमी उत्ते दस्तखत किए। भारत विच जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवियाउन योग ऊर्जा के खेत्र विच एक आलमी लीडरशिप भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान नाल जुड़े कथित गबन के मामले विच दर्ज पहली FIR के 8 मुलजमान गिरफ्तार किया है। पंजाब दे जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सूबे नूं नशा मुक्त बनाने लई चलाई जा रही युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत कल मलेरकोटला विच पंजाब उर्दू अकादमी विखे जिला पदरी समीक्षा मीटिंग कीती। पंजाब सरकार ने अपने सरकारी दफ्तरां दा समां पहलां दी तरह सवेरे 9 बजे तों शाम 5 बजे तक करन दे हुक्म जारी कर दित्ते ने। अज देश दे वख-वख हिस्सियां विच आशुरा ए मुहर्रम पूरी श्रद्धा ते संजीदगी नाल मनाया जा रहा है। भारत ते आयरलैंड विचकार दो

0: बड़ा खुशनुमा ये मकाम है, नई जिंदगी की तलाश कर तू ना, अपने जहन की बात कर, नई दोस्ती की तलाश कर। अवमान 102.7 मेगाहर्ट्ज ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल तुसी सुन रहे हो। सारे ही श्रोते दा खुशामदी जीएनयू प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच। ते जी प्रोग्राम दी शुरुआत हुई है ते मैगे जी आगाज हमेशा हसदे चेहरे नाल ही करना चाहिए ते चेहरे ते मिठी जी मुस्कान दिल विच जोश प्यार ते दोवें हाथ जोड़ प्रोग्राम का आगाज करने की मैं थोड़े तो इजाजत चाहनी हाँ। तो अज रात दे इस खास फरमाइशी प्रोग्राम दे विच तुहाडे बहुत सारिया फरमाइशा पूरिया कीतिया जाणगियां। तो फरमाइशा भेजने वास्ते नंबर है जी 9855 10 10 27। तो बस फिर इस नंबर से छेती छेती भेज देनी है तुसी अपने फरमाइशा, चाहे तुहाडी फरमाइश हिंदी फिल्मी गीत दी होए या फिर पंजाबी फिल्मी गीत दी, इत्थे हर एक फरमाइश नू इक्वल तरजीह दिती जांदी है। अफरोज आलम साहब दी लिखत चेते आ रही है, लिखदे ने तेरे आसमान का सर कभी किसी और जमीन पे झुक गया, ये हुआ तो ऐसा हुआ ही क्यों, कभी उस कमी की तलाश कर। ते बस फिर आज दी इस खास महफिल दे विच ना असी सारिया कमियां पेशियां दूर कर देनी है प्यारे प्यारे मिठे मिठे गीतां दे राही। प्रोग्राम दे विच दोस्तों तुहाडे प्यार भरे सुनेहे साडे तक पहुंचने शुरू हो गए है। मैगे जी प्रोग्राम दे विच सब तो पहला हाजरी लगाई है, हाजरी लगा के पहले नंबर ते आ गए ने नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो वेद मिड्डा ते अलका मिड्डा जी। ते इन्हां दी फरमाइश है जी महबूब की मेहंदी फिल्म दा कहिंदे गीत सुना दिता जाए, वाह जी वाह। ते इस दे नाल ही नाल आवाज है जी मोहम्मद रफी दी, ते लो जी फिर सुन लेने हैं महबूब की मेहंदी फिल्म दा ते इस प्रोग्राम दिल चाहता है दा पहला गीत।
1: ये जो चिलमन है

कहते उम्र दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। पर उम्मीद है साढ़े स्रोते सानू बिल्कुल इंतजार नहीं करवाणगे ते अपने मैसेजेस फटाफट जड़े अपनी फरमाइश साढ़े तक भेजणगे। 98-55-10-10-27 इस नंबर दे उते। नमस्कार, लिख के भेजिए जी सानू मजनू का टिल्ला तो, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, सतना मध्य प्रदेश तो, उमंग मलिक, आकांक्षा ते माही ने। करणवीर हाउस पुचो कैंचिया बठिंडा पंजाब तो, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, तपिंदर परिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन ते अभिजोत, इन्हां दे नाल ही अनारकली बाजार जगराओं पंजाब तो, सुनील पाठक, कमल, दीपिका गवैया, भाई सुच्चा सिंह पाठक ते विनोदपुरी ते मैसेज दे नाल ही इन्होंने फुल भेजे है ते फुलां दे नाल ही एक बड़ा ही सोहना मैसेज है कि खुश रहो ते खुशियां ही वंडो। कहिंदे जिहड़ी चीज़ इंसान तो हुंदी है ना उही इंसान अगे चीज़ वंड सकता है, लोकां नूं वंड सकता है। जेकर तुहाडे अंदर खुश मिजाजी है तो तुसी जिन्हों मिलोंगे उहदी जिंदगी दे विच खुशियां ही भरोंगे, पर जेकर उदास, दुखी, खिजू खिजू रहिंदे हो, हर एक प्रॉब्लम तो सहमे बैठे रहिंदे हो, तो बस फिर जिसनों भी मिलोंगे उस इंसान नूं उही चीज़ां जाणगे। तो जिवें सानू एक खुश मिजाज इंसान नूं मिलके खुश

ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी और नजर से हम। वाह जी वाह, बशीर बद्र साहब ने क्या खूबसूरत लाइना लिखी है कि लै दे के जड़ी चीज है दुनिया दे विच ओ नजर ही है, ते सारा जड़ा कमाल है ना ओ साडी नजर दा ही है। कुछ लोग पहली नजर दे विच ही उन्हां दी सादगी, उन्हां दी संजीदगी

इस फरमाइशी प्रोग्राम तो तुहाडे तो इजाजत लेनी पैनी है, तुहाडे तो विदा लेनी पैनी है। पर कुछ मैसेजेस जो साढ़े तक पहुंचे हैं उन्होंने भी एक बार प्रोग्राम दे विच जरूर शामिल करांगे। फरमाइशा जिहड़ी दोस्तां दीआं अज गीतां भरियां नहीं पूरियां हो पाईआं, वह दोस्तां ने नाराज़ नहीं होना, कोई गिला शिकवा नहीं रखना, प्रोग्राम नूं इंज ही प्यार दिंदे रहना। तो जेकर अज फरमाइश पूरी नहीं हुई तो कल परसों टीता परसों तो बाद जरूर हो जाएगी, पर अपना प्यार इंज ही बना के रखना है। FM रेनबो दे नाल जी, नमस्कार नमस्कार लिखे भेजी है पिंड गिला तो हरमेश बसरा मनप्रीत नेहा समरवीर ते अमनदीप सिंह ने। सुरेंद्र कुमार सोपती नीतू सोपती साहिल राहुल मेगा कामंडी चौक जलंधर तो मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है जी। पिंड कुम्हार हेड़ा सहारनपुर तो सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सा नाजिया आफिया इब्राहिम सदाम ते अदीब। पिंड कलाना तहसील पादरा तो जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के रहने वाले कड़वासरा परिवार सचिन कड़वासरा सतीश योगेश ते युदव, बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया करते हाँ असी पिंड कालेगांव जाफराबाद तो भेजने वाले बयाल देशमुख परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस दे नाल ही गोविंदपुरा सिकर राजस्थान तो दातार सिंह शेखावत संगीता तुषार ते रिंकी जिन्होंने मैसेज किया, ते अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक पहाड़गंज मुल्तानी टांडा दे रहने वाले ने, ते हर वार दी तरह मैसेज कर रहे हैं। ते इस मैसेजेस दी लड़ी दे विच नज़दीक बस स्टैंड बुरज हनुमानगढ़ फाजिलका तो भी वर्मा परिवार जुड़ गया, रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश डॉक्टर मदन लाल वर्मा रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा करुणा वर्मा अमरगढ़ जिला श्रीगंगानगर तो कुलवंत मान लखविंदर खुशप्रीत गनरूर ते कुलविंदर हरविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया मंगल जनागल श्रीमती रोशनी अंकुर इंदु ते डॉक्टर सुनील दा। ते इस नाल ही कस्तूरबा नगर जलंधर कैंट तो मैसेज करने वाले रेहान एकता गुड्डू अनीता विकास कश्यप बोबी राजपूत परीक्षित राम कुमार चौहान तहसील सूरतगढ़ पिंड रामसा तो मैसेज आया है जी। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला तो रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश प्रियंका मन्नत गुरकीरत दारा पंडित संजय शर्मा प्रियंका शर्मा सुखवीर सिंह कोमल प्रीत रोमन प्रीत फाज शाजली जिला संगरूर तो बठिंडा तो परमिंदर सिंह सोनी करण सोनी रानो दीपू वीरपाल कुलदीप कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह सिटी दीवाना जी। निसार सलमानी नुशाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू इन्होंने ही साथी सौरभ छाबड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया जी इन्हों का भी प्रोग्राम दे विच मैसेज करने वास्ते। सौरभ छाबड़ा जी पंजाब तो ही मैसेज आया इन्हों का, मोल टाउन जलंधर के रहने वाले ने ते ब्लाइंड स्कूल के कोल रहिंदे आ, ते मैसेज भी प्रोग्राम दे विच शिरकत करन वास्ते मैसेज राही बहुत शुक्रिया। ते रिस्पेक्टेड होस्ट जी डिकैस्ट्रो परिवार नमस्कार लिख के प्रोग्राम दे विच हाजरी लगाई, प्रोग्राम सुनिया इन्होंने जोन डिकैस्ट्रो रोजी डिकैस्ट्रो पर्ल ते विलिस, बहुत बहुत शुक्रिया जी तहे दिलों शुक्रिया। ते जांदे जांदे एक दोस्त ने कुछ लाइना भेजियां प्रोग्राम दे विच जरूर शामिल करांगे, लिखदे ने इंसान दिल से खुश सिर्फ उस इंसान के साथ रह सकता है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। वाजीवा जिंदगी दे जिस भी मुकाम ते हो जिस भी जगह ते हो उस मुकाम नू शुक्रिया ते उस पल नाल मोहब्बत करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मोहब्बत है ता ही जिंदगी जिंदाबाद है। ते बस इसी दे नाल कि अपना खूब ध्यान रखोगे ते जिथे भी जाओगे सिर्फ मोहब्बत दा ही पैगाम वंडोगे। इस नाल ही मैनू यानी कि अपने दोस्त आरजे नेहा रलहन नू प्रोग्राम दिल चाहता है तू हुन दियो इजाजत ते मैं मिलदी हां तुहानू जल्द ही प्रोग्राम शामे गजल लैके। तद तक इस प्रोग्राम दा आखरी गीत फिल्म धर्मवीर ते आवाज

उसका क्या मन बेद बताऊं, उसका क्या अंदाज कहूं, बात भी मेरी सुनना चाहे, हाथ भी रखे कानों पर, हाथ भी रखे कानों पर। प्रोग्राम शामे गजल सुन रहे हो अपनी दोस्त आरजे निहारल हंदे नाल। गल हो रही है नजर दी, ते नजर ओ ताकत है जिस नाल हर एक चीज देखी जा सकती है। ते तुहानूं पता है देखन दे नाल नाल महसूस भी हुंदी है हर एक चीज नज़र दे नाल। लफ्ज झूठ बोल सकती है पर नज़र हमेशा सच बोलती है, क्योंकि नज़र नूं झूठ पता ही नहीं है। नज़र दे कोल तां सिर्फ इको ही बख्शिश है सच वेखण दी। ते जद नज़र दे विच कोई महबूब होए, कोई खास शख्स अपनी जगह कर लैंदा, घर बना लैंदा, नज़र तो दिल तक उतर जांदा, दिल दे विच उतर जांदा, ते फिर ये नज़र जिथे भी नज़र मारती है उस शख्स ही नज़र आंदा है। आसमान वाल तकिए तां उस शख्स दिखता है, चलदी हवा विच उसका अक्स नजर आंदा है, महसूस हुंदा है, चन्न विच महसूस हुंदा है, दिखदा है सितारियां विच ओही दिखदा है जद नज़र दे विच कोई खास नज़र उतर आवे। इसते ही क्या खूब जान निसार अख्तर लिखते ने, आए क्या क्या याद नजर जब पड़ती इन डालानों पर, उसका कागज चिपका देना घर के रोशन दानों पर, घर के रोशन दानों पर।

नजर नजर में तकाजा जरूर होता है, छुपा हुआ कोई जज्बा जरूर होता है, कभी वो सामने होते कभी नहीं होते, तसव्वुरात में धोखा जरूर होता है।

नमस्कार, आदाब जी आयनो। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, लेके हाजिर हाँ तुहाडे दोस्त आरजी निहारल है। एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है, जिथे तुसी सुन रहे हो एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, जिस विच गल करदे हाँ प्यार, नगमा, मोजो की रवानी, जिंदगी, कहानी बारे। तो इस गीतां दे सरगम राही असी ये हर एक चीज का आनंद लैंदे हाँ। ते अज दी इस रात दे गीतां दे सरगम दे विच तुहाडे पेशे खिदमत गीत करन तो पहला कहिंदे ने मेरी पहचान है, मेरी पहचान है क्या, मेरा पता दे मुझको, कोई आईना अगर है तो दिखा दे मुझको।

बोलो तुम हो गए इशारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे।

नजर मिला के, नजर मिला के मेरे पास आके लूट लिया। नजर हटी थी कि फिर मुस्कुरा के लूट लिया।

0: बटके बटके बटके बाकिया जाए देख न जी देखना दिल न चुराए देख न जी बाकिया जाए देख न जी देखना दिल न चुराए देख न जी।
1: हुसन यू इश्क से नाराज है अब फूल खुशबू से खफा हो जैसे। उसने कहा देखो नजर जब की तो बस यूं खफा हुए कि दिल ने कुछ कहा। दिल लिखता है खफा है फिर भी आकर छेड़ जाते हैं तस्वुर में। खफा है फिर भी आके छेड़ जाते हैं तस्वुर में हमारे हाल पर कुछ मेहरबानी अब भी होती है जब भी वो खफा होते हैं।

दिल धड़कता है, दिल धड़कता है तो आती हैं सदाएं तेरी। चांद खुद महव तमाशा था फलक पर उस दम, जब सितारों ने उतारी थी बलाएं तेरी।

दिल धड़के तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है।

किसी ने कहा चांद से हो, किसी ने कहा चांदनी सी हो, मगर चांद चांदनी दोनों ही आसमान के हैं। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे से निकल पड़ता है।

उसको रुखसत तो किया था, उसको रुखसत तो किया था, मुझे मालूम ना था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है सुन रहे हो। तो इस प्रोग्राम इस गीता दी सरगम दा आखरी गीत आखरी नगमा